0: ना, चाहे जो हो जाए इस गिफ्ट को खोने ना देना।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से खूबसूरत से नए दिन की शुरुआत करने का वक्त जो है वो आ ही चला है। यार सच कहूँ, हर एक नया दिन ना हमारे लिए बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत होता है। इसीलिए तो शायद इसे तोहफा यानी कि प्रेजेंट कहा जाता है। लेकिन हम जो है ना काफ़ी अजीब होते हैं, पता नहीं यार क्या ही सोचते रहते हैं। कभी कल की यादों में पूरी तरह से उलझे रहते हैं तो कभी आने वाले दिनों की फिक्र में हम पूरी तरह से खो जाते हैं। और इसी बीच जो सबसे बड़ा गिफ्ट है ना लाइफ का, ये प्रेजेंट मोमेंट, उसे जीना कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। यार लाइफ जो है ना हमेशा वन डे में नहीं होती, लाइफ तो इस एक पल में होती है। यू नो, वो चाय की प्याली में, इन बातों में, वो अगले गाने में आपकी और मेरी इस कॉन्वर्सेशन में। यार बस कई बार शायद एक ही कोशिश करनी है, सारे कलों को छोड़ जिंदगी में आज को जीना शुरू करना है। वो कहते हैं ना कि कल की फिक्र में आज को खोना ठीक तो नहीं, हर पल यूं ही बेचैन होना ठीक तो नहीं, जो लम्हा अभी है वही सबसे खास है मेरे यार, आज को इग्नोर कर कल की फिक्र में जीना ठीक तो नहीं। क्या कहती पब्लिक? तो चलिए इसी पल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जल्दी से एक मैसेज तो कर दो 5000 1896। Let's get connected there, Instagram Mirchi1Kathar या Mirchi Anshu. Enjoy!

0: Mirci.
1: Iskava na puskava na sakava na Yabala. Burga, burga. La vizva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे
3: हैं? मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब,
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार बात इतनी है कि आज मौसम जो है ना वो भी अलग सी खुशियां ही मना रहे।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जब हर चीज इतनी खुशनुमा हो तो हमें मौसम में भी सब कुछ अच्छा ना नजर आए तो फिर क्या है भाई साहब। फाइनली ईद की छुट्टियां जो है हमारी जिंदगी में शुरू होने जा रही हैं एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। आज जो है अच्छी तरह से काम और कर लो एंड उसके बाद कल से घर पे आराम ही आराम है। ईद के जश्न को मनाना है, खूब सारा एंजॉय करना है। सूरज चाचू आपके क्या हाल है?
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट, अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को हम देखने की कोशिश करें सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 33। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पूरी तरह से खुद को हाइड्रेटेड रखें ईद के जश्न में। भाई साहब सूरज चाचू को भी जरूर शामिल करें। क्या है ना, जब अंदर से हम खुश होते हैं तो बाहर भी सब कुछ अच्छा लगने ही लगता है। क्या कहती पब्लिक? स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: अच्छा सुनो, बचपन के दिनों में कभी जानबूझकर घूमने की कोशिश की है?
1: मिर्ची अंशु
0: यार, हमने ना ऐसी हरकत की है, बड़ा मजा आता है. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. यार, इस वक्त अगर अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं तो सीधा अगर कोई एक्सपीरियंस याद आता है तो वो है नानी का घर. गर्मी का दिन जहां मामा के बच्चे, मासी के बच्चे, हम सब एक साथ मिलकर क्या खुरापाती हरकतें क्या करते थे. हम सब की उम्र जो है ना ऑलमोस्ट सेम, हम उम्र. अब ऐसी टोली जब घर के बड़ों के साथ कहीं बाहर निकल जाए तो कुछ खास प्लानिंग ना हो तो फिर क्या ही हो. एंड हमारा प्लान जो है ना बड़ा कमाल होता था कि भाई हर किसी ने अलग अलग जगह जाके घूम जाना है, स्पेशली अगर हम किसी फेयर में. अब ऐसा क्यों, हम जो है किसी दुकान में जाते थे, जोर जोर से रोने लगते थे कि हमारे मम्मी पापा जो है ना गुम गए. अब दुकान वाले भैया इतने उदार होते थे, ना ही सिर्फ हमें प्यार से बिठाते थे, पानी पिलाते थे, बल्कि अगर कुछ दुकान में अच्छे टॉयज हैं तो हमें फ्री में दिया करते थे. कुछ अच्छा खाने पीने का सामान है वो भी मुफ्त में मिलता था. एंड हाँ, इसके चलते हमारी लॉटरी एंड पार्टी जो है ना वो बस हो ही जाती थी. लेकिन ना यार, कतर के बच्चों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कतर ने इस वक्त लॉन्च किया है किड्स गो कैंपेन, जिसके चलते 12 साल से कम उम्र के बच्चे कतर में हो रहे बहुत सारे एक्टिवेशंस को समर्स के दौरान ना ही सिर्फ मुफ्त में एंजॉय कर पाएंगे, इनफैक्ट अगर डाइनिंग की बात करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनका मजा भी उठा पाएंगे. लेकिन हाँ, माँ बाप को अपनी टिकट खरीदनी होगी. ऐसा नहीं बच्चों के साथ हम भी मुफ्त थोड़ा तो पैसा खर्च करो, जेब ढीली करो. किड्स गो कैंपेन के सारे डिटेल्स जानने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करते रहिए एंड बस सुनते रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु. Enjoy.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi Fresh Maal.
3: Swag, style, aur bold energy ke saath suno Lipstick.

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: खट खट,
7: हु देयर?
6: अगर कर,
7: अगर कर हु?
6: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
7: खट खट, हु देयर?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Well, Jasmine Sandalus ki khubsurat si awaaz, just Sachin Jigar ki ye composition and kya power pack gana yaar. Bhai saab taras kyun hi aaye, abhi to jashn manane ka waqt hai.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You listen to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. Well, aapki zindagi mein ek bar phir se mithas puri tarah se bikherne ki koshish karna main kar hi rahi hu. And aaj to hai bilkul muh meetha karane ki hi bari hai. Because agar aaj ke din ko dekhne ki koshish kare to meri diwan se jo announcement hui hai uske hisab se jitni bhi government bodies hain, public sectors hain, unke liye ईद की हॉलीडेज की अगर हम बात करें तो उसके पहले आज है आखिरी वर्किंग डे. एंड कल से अगर जिंदगी में कुछ शुरू होने वाली है तो वो है छुट्टियां. तो भैया ईद की मुबारकबाद जो है मैं तो आपको आज ही से दे दूं क्योंकि मुझे पता है कल तो जो है आप इस वक्त आराम से आराम फरमा रहे होंगे. उसके बाद जो हमारी मुलाकात होगी वो अगले संडे को ही होगी. तो इन एडवांस आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. यही दुआ यार इस पाक महीने में, इस खूबसूरत से मौके में आपके दिल की जितनी भी दुआएं ना यार वो कबूल हो. सबसे ज्यादा जिंदगी में पता है एक ही बात जरूरी है, वो है खुश रहना. बहुत ज्यादा खुश ना यार. लाइफ का एक पहलू जो मैंने देखा, जो मैंने समझा है, ये एकदम क्लियर एंड तय है कि वक्त की खासियत यही है कि कैसा भी हो ना ये निकल जाता है. अच्छा है, बुरा है, हो सकता है शायद कईयों के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल हो, कईयों को लगे नहीं यार हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो दिल से दुआ है अच्छा ही चले. अगर लगे कि थोड़ा कम अच्छा चल रहा है, बेचैन नहीं होने का, परेशान नहीं होने का, वक्त है यार गुजर ही जाएगा. क्या कहती पब्लिक. चले जी, मीन वाले काम करती हूँ. उस वक्त करण औजला की आवाज में एक पावर पैक ट्रैक है जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ. उसके बाद कुछ देर में होंगी और भी बातें. मीन वायल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट. बंदी का नाम अंशु.

0: वेल बंजारी की प्यारी सी आवाज, उन्होंने लवली सोलफुल ट्राई कर यार, ये खूबसूरत सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया। साथ ये भी बता दूं, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:03।
1: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे आज अगर कुछ किया जाएगा तो आपका कैलेंडर सेट किया जाएगा।
2: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग सिंथेसिस, आज आंशु विद यू। बॉस एक बार फिर से आपकी जिंदगी में ना ढेर सारी मिठास घोलने की तैयारी जो है मैंने कर ली है, लेकिन मिठास कुछ इस तरह से आएगी कि जिस बात का हमें बेसब्री से इंतजार था, एक बार फिर से वो नजारा हमको देखने को मिलेगा। वेल कतर की सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई खास मौका हो, स्पेशल ओकेजन हो, तो ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन पे हम जैसे सितारे तो होते हैं, लेकिन आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे जब ये पूरी के पूरे एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं ना, तो सब कुछ इतना अच्छा होने लगता है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट फायरवर्क्स, तो अगर फिर से तैयार हो जाए, क्योंकि अगर मैं बात करूं ईद अल अदा के फायरवर्क्स की, तो ये रौनक अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी, सो दैट इज गोइंग टू बी एट कटारा कल्चरल विलेज 27, 28, 29। ये तीनों दिन बिल्कुल शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारी एक्साइटिंग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज आप कटारा कल्चरल विलेज में एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर फायरवर्क्स की हम बात करें तो ठीक 8:30 बजे आपको तीनों दिन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है, गौर फरमाना है भाई साहब, भीड़ जो है ना अपरंपार होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं 8:30 बजे का फायरवर्क है, ठीक है जी, घर से 7:30 बजे निकल जाएंगे, 8:15 तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी ना होने वाला। कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे का मार्जिन जो है लेकर निकलिएगा, क्योंकि जब भीड़ आती है ना, सैलाब एक साथ आता है, तो ये समझ में आ जाता है कि निकले तो कैसे निकले हाय। लेकिन इतना फंसने के बाद जब वो आसमान में देखते हैं ना, तो खुशी होती है ना, अपरंपार होती है। एंजॉय जी, एडवांस वाला ईद मुबारक।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हेलो
1: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
2: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
0: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
2: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: मीसम नाम है।
2: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
0: 1200 रुपए।
2: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
0: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
2: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
0: जी
2: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
0: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
2: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
0: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
2: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की। तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
0: सर
3: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
0: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
3: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
0: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
4: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: What a lovely track it is, यार क्या ही खूबसूरत सा गाना. मतलब कुछ गाने होते हैं ना जो आपके दिल को छूना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना उनमें से एक जरूर है. Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aryanshu with you. चलिए अब एक बार जरा उस पहलू की बात करें जो हमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले से और भी ज़्यादा दिल से कनेक्ट करता है, जोड़ता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईद अल अधा प्रेयर एंड कम्युनिटी गैदरिंग. तो एक बार फिर से इसकी अनाउंसमेंट जो है हो चुकी है. वेल, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन 27th ऑफ मे एट एजुकेशन सिटी स्टेडियम. ठीक 5 बजे जो हैं प्रेयर शुरू होंगी एंड डोर्स जो हैं रात 2:30 बजे बिल्कुल खुल जाएंगी. जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ आएंगे तो वही जायज़ है, इंतज़ाम जो है करना पड़ेगा एंड काफ़ी पहले से करना पड़ेगा. तो रात के 2:30 बजे भाई साहब इस वक्त अगर कुछ होगी तो वह डोर्स ओपनिंग एंड उसके बाद सुबह सुबह 5 बजे अगर हम सब मिलकर एक साथ कुछ दुआएं मांगेंगे तो बस यही सारे के सारे लोगों की दुआएं जो है वो कबूल हो एंड सबकी ज़िंदगी में अगर कुछ आए तो वह है ढेर सारी खुशियाँ एंड ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत दे यार, इतनी बरकत दे कि आपकी ज़िंदगी जो है ना हमेशा खुशहाल रहे. दिल से इस ईद अल अधा हमारी आप सबके लिए यही दुआ है. बढ़िया है जी. चलिए दुआएं जो हैं वो तो हमने कर ली, आपके लिए भी कर ली. आप एक काम करिए ना यार, मुंह मीठा कराने की तैयारी करेगा. मुझे सेवैयाँ बहुत पसंद है, जिसके घर में भी सेवैयाँ बन रही हैं आपने मुझ तक जरूर पहुंचाना. 5001896 विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने

0: हैं तो बहुत कुछ होगा,
1: बहुत कुछ होगा।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मानी अंशा वाले खुलगड़ी की पावर पैक आवाज यानी सुपर पावर पैक ट्रैक फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी। ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन हाँ आप जो धुन सुनाने वाली हैं उसको सुनने के बाद दीवाने वाला एहसास जरूर होगा।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बॉलीवुड फिल्मों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम अक्सर किसी बात से कनेक्ट करते हैं तो वो है उन धुन से, उस म्यूजिक से जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ना उस फिल्म की पहचान बन जाती है कि जब ये धुन हमारे बीच पेश हो तो हमें कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि भाई मैंने इसे कहीं तो सुना है, अच्छा उसमें सुना है, बिल्कुल बाबा। तो अभी वाला मोमेंट जो आपकी लाइफ में आ चुका है, एक आइकॉनिक सी बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, आपको सुनना है फटाफट से आइडेंटिफाई कर, मुझे बस ये बताना है कि ये धुन है तो किस फिल्म से है, ये किस फिल्म को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही है, एंड अगर साथ में इसके लीड कैरेक्टर्स भी बता दें आखिरकार कौन कौन थे तो भैया आपको ब्राउनी पॉइंट जो है मैं दे दूंगी क्योंकि सेवैया आप मुझे देंगे ईद वाली। तो चलिए धुन सुनने की तैयारी शुरू करते हैं। करेक्ट आंसर कहां देना है वाला, यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हिच इज 5000186 5000186 पे, विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, सो हियर वी गो।

फिल्म में जब जब कुछ खास आलम हुआ, ये म्यूजिक ने उसे और भी ज्यादा एनहांस किया. किस फिल्म से है ये? 5000 1896. फटाफट से रिप्लाईज भेजो. आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज. गिफ्ट के तौर पर इस फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपसे कुछ देर में मैं आपको सुनाऊंगी. लेकिन जब आपने सही जवाब बताया उसके बाद, मीनवाइल बनी दयाल की आवाज, लुच्चा ए उल्फत. ना हुआ नहीं गाना है. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: वेल अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म बर्फी. इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिस धुन को मैंने आपके बीच पेश किया था उसकी कहानी बता दी जाए.
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आर्जे अंशु विद यू. वेल, अब से कुछ देर पहले खूबसूरत सी धुन मैंने आपके बीच पेश की, आपको सुनकर बस मुझे ये बताना था कि ये धुन है तो है किस फिल्म से. नाउ फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से वो म्यूजिक मैं फिर से सुनाती हूँ. अगर लगे कि अभी भी सुनते हुए आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस फिल्म से, तो मुझे फटाफट से करेक्ट आंसर जो है वो भेज ही देना, नहीं तो मैं आप तक पहुँचा ही दूंगी. सो हियर यू गो.

0: राइट यू, देखें लोगों का क्या कहना है।
1: गुड मॉर्निंग अंशु, इट्स हम आपके हैं कौन, सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित।
0: वेल एब्सोल्युटली, आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही। इनफैक्ट जितने लोगों ने लिखकर भी जवाब भेजा वो भी पूरी तरह से सही। अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो 1994 में रिलीज हुई बॉलीवुड की एक ऐसी म्यूजिकल फैमिली ड्रामा जिसने हम सभी का दिल जीत लिया। तो भाई उस फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। वेल एक बात बता दूं, सूरज बरजातिया ने जब उस फिल्म को रिलीज किया एंड राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के अंदर इसे प्रोड्यूस किया, भाई साहब पूरे के पूरे देश में ना शादी के फंक्शंस की लहर अगर किसी फिल्म ने लेकर आई तो वो है हम आपके हैं कौन। वेडिंग्स इंडिया में सेलिब्रेशन के अलावा अगर एक फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट करने किए जाने लगे तो उसका प्राइम रीजन कोई है, क्रेडिट किसी को जाता है तो वो है हम आपके हैं कौन। क्या कमाल लगे हैं, मतलब सलमान खान एस प्रेम, माधुरी दीक्षित एस निशा, अलॉन्ग विद ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज बाय मोहनीश पहल, रेणुका शाहने, अनुपम खेर, आलोक नाथ एंड मेनी मोर। लेकिन इस फिल्म के अगर सबसे एक्साइटिंग पार्ट को देखने की कोशिश करें, इसकी स्टोरी के अलावा, एक्टर्स की कमाल एक्टिंग के अलावा, डायरेक्शन के अलावा, तो वो रहा इसका म्यूजिक। और एक बार फिर से राम लक्ष्मणन साहब ने क्या मेजर हिट डिलीवर किया यार, अलॉन्ग विद सूरज बरजातिया, वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। कहते हैं ना यार, म्यूजिक बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमें कनेक्ट कैसे करे। तो इसमें वो गिटार की बीट हो या ये सॉफ्ट म्यूजिक जो थ्रू आउट फिल्म में चलता रहा, इस फिल्म के गाने हो, यार हर चीज जो है ना इस फिल्म में काफी मैजिकल रही। तो चलिए, आपको डिटेल्स तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अब काम करते हैं, इस फिल्म से एक प्यारा सा गाना भी आपको सुनाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज में। लेकिन उससे पहले मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
2: KIMS Health Medical Center.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
2: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: Cut, cut!
6: Who that?
5: Zaheer!
6: Zaheer! Zaheer who?
5: Zaheer si baat hai, main hoon, aur koi nahi.
6: Cut, cut! Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म धुरंधर। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इतना बता दूं मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8:03।
1: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: अरे हमने सोचा था कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों, लेकिन ना ऐसा होने ना दिया।
2: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Adyanshu with you. Well, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां बिखेरने की कोशिश जो है ना मैं कर ही दूं कुछ इस तरह से कि well, मैंने आपको बताया था कल कि अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट बॉडीज एंड एंटिटीज की बात करें, तो उनकी ईद अल अधा की छुट्टियां जो है वो ऐलान उनका हो चुका है, डिक्लेरेशन हो चुका है 26 मई से लेकर इट इज गोइंग टू बी 27, 28। हाँ जी, एंड उसके बाद अगर ये वर्क रिज्यूम करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ऑन 31st। कुल मिलाकर 5 दिनों की छुट्टियां जो है ना, 3 दिन ईद की छुट्टी एंड साथ ही 2 दिन की एडिशनल वीकेंड वाली छुट्टी हमारी लाइफ में आई, लेकिन उस वक्त प्राइवेट सेक्टर वालों के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, भैया हमने क्या बिगाड़ा है। तो चलिए आपके लिए भी खुशखबरी ये है कि एमएलई दीवान से बस यही घोषणा हुई है कि कुल मिलाकर 3 दिनों की छुट्टियां जो है वो आपके लिए भी पूरी तरह से वैध यानी कि वैलिड है। एंड अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपका वर्क डिमांड करता है कि आपको किसी भी रीजन से ऑफिस जाना है, तो बिल्कुल आप अपने बॉस को जाकर ये कह सकते हैं कि भैया आज के पैसे तो मुझे मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कहाँ से, अंशु ने कहा है, नहीं बात में वो अंडे जूते मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए, मैंने तो सिर्फ मिनिस्ट्रियल एडवाइस को आप तक पहुँचाया है। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एडवांस में आप सभी को ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। स्टडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vidva la murga. Milchi, murga.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: तो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: How's the Josh?
6: Hi sir.
5: How's the Josh?
6: Hi sir.
7: Oh boy, Josh hai full high aur volume bhi, kyunki aa rahe hain Bollywood ke best tracks back to back.
8: Back to back. Qatar ka number one radio station.
9: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

भाई साहब, मिलेनियर ये गाने बनने के बाद ये सिंगर्स जो जरूर हो गए थे, वैसे पता नहीं लोगों को ये गाना कुछ इस तरह से पसंद आया कि इसकी कहानी जो है ना, मुझे अपनी जुबानी बयां कर पाना इस वक्त काफी मुश्किल है। अगर हम बात करें तो उसकी बहुत सारी प्लानिंग आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, लेकिन एक काम ऐसा है जिसे 101% आपको अपनी प्लानिंग लिस्ट में शामिल रखना है अगर अब तक ना किया। देखिए, ईद अल अधा का जश्न इस वक्त कुछ ऐसे खास होने वाला है भाई साहब की जैसे ही 30 तारीख आएगी, मम्मियों की जिंदगी में अगर उस आने वाला है तो एक ऐसा मौका जो कि ना ही सिर्फ उन्हें एक प्लेटफॉर्म देगा कि वो रेड कार्पेट में वॉक कर सके, बल्कि मॉमी से सुपर मॉमी बनने की अपनी इस जर्नी में एम्बार्क भी कर सके। एब्सोल्युटली आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। वेल, अब तक के सबसे बड़े और सबसे बोल्ड एडिशन का अनाउंसमेंट जो है वो हो ही चुका है। इतना बता दूं, 30th of May वो तारीख है जब फाइनली ऑडिशन का राउंड होस्ट किया जाएगा। तो अभी भी आपके पास चंद दिन रह गए हैं, ये आखिरी मौका है कि अगर आप चाहें तो मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने अपना वीडियो नहीं भेजा है तो फटाफट से एक ही काम करना है, 5000 1896, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। आपको बनाना है खूबसूरत सा वीडियो अपने बच्चे के साथ, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ फनी रील, इट कुड बी एन इमोशनल कॉन्टेंट, या तो फिर कोई भी आर्ट फॉर्म। बस उस वीडियो में अगर हमें कुछ नजर आना चाहिए तो एक खूबसूरत सी झलक उस बॉर्न की जो आप अपने बच्चे के साथ शेयर करते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन अप टू 1 मिनट बहुत है, फटाफट से भेज दीजिए 5000 1896 पर। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो उसके बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। ऑडिशन के बाद जब ग्रैंड फिनाले होगा तो भैया ना ही सिर्फ वो ताज शायद आपके सर पे सज जाए, लेकिन उसके अलावा जो आप मेमोरीज बनाएंगे, जो आप कनेक्शंस बनाएंगे, ये कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजें। मीनवाइल मेरी तरह ये जो गर्ल है ये मिट्टी मिट्टी सी करती रहे, नहीं ये तो तोशी रहना बोल रहे, जरा सुने, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: खास फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। वेल, इस वक्त ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कुछ और काम की बात जरा आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Hai Anshu with you. इस वक्त अगर कोई सैलाब चल पड़ा है तो वो है बस छुट्टियों का। Having said that, हमने आपको बताया कि अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, तो दोनों ही एंटिटीज बॉडीज जो हैं कुल मिलाकर 3 वर्किंग डेज के ऑफिशियल ऑफ के लिए पूरी तरह से एंटाइटल हैं ऑन द ओकेशन ऑफ ईद अल अधा। लेकिन इसके साथ ही अगर बैंक्स की बात करें तो कतर सेंट्रल बैंक ने भी ये कन्फर्म किया है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी छुट्टियां जो हैं ये शुरू होंगी कल से, यानी कि 26 मई से, एंड इज गोना कंटिन्यू until 28th of May. एंड इसके साथ ही अगर ऑपरेशंस की बात करें तो 31st of May से ये रिज्यूम होंगे। बढ़िया है जी, आप सबको ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। इतनी ही दुआ है, यही उम्मीद है कि हम सबकी ज़िंदगी में नया इस बार ईद अल अधा के ओकेशन में बहुत ही सारी खुशियाँ आएँ। देखिए यार, ये जो 10 दिन रहे हैं ये बहुत ही पाक एंड बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं। एंड खासकर अगर आज एंड कल के दिन को देखने की कोशिश करें तो भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन है। वेल, दिल में जो भी ख्याल रखें, सारी चीज़ें पॉजिटिव रखें। कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं कहीं ना कहीं वैसा हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट जरूर होता है। तो जब सोचना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा ही सोचें यार, यू नो, जस्ट सेइंग। टिक्की बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद,

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Dosti kai ko sulai madam. No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए
3: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा खूब मिलेगा
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: मोहन अली ठाकुर की खूबसूरत सी आवाज और लवली ट्रैक इट इज, ये प्यारा सा गाना इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बहुत अच्छी सी बात भी आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, आप सभी को ईद अल अधा की एडवांस में बहुत सारी मुबारकबाद। वेल, अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें सो इनडीड इट इज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस ऑल, बिकॉज कल वो दिन होगा जब फाइनली हमारी जिंदगी में अगर कुछ होंगी तो वो है 5 दिनों की छुट्टियां। एब्सोल्युटली, कैन यू बिलीव इट यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब इस बार के अगर पूरे के पूरे सिस्टम को देखने की कोशिश करें सो कुछ इस तरह से ईद अल अधा हमारी जिंदगी में आया कि यार ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे ये 3 दिन तो ईद अल अधा की छुट्टियों के लिए हमें मिली गए, के बाद एक्सटेंडेड 2 दिन का और वीकेंड, मतलब परफेक्ट टाइम किसी वेकेशन में जाने के लिए, फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताने के लिए। वो इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे मौके जो है ना जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, और जब मिले हैं तो उन्हें दिल से जिए, बहुत खुशी खुशी जिए, एंड हर एक पल को कुछ इस तरह से जिए यार कि जब बाद में इस पलों को सोचे ना तो दिल में काफी तसल्ली हो कि इस बार की ईद की छुट्टियां हमने मनाई तो बड़ी दिल से मनाई। देखो यार, खुश रहने के लिए ना जरूरी नहीं कि हम किसी अच्छी जगह पर ही जाएं या किसी बड़े डेस्टिनेशन वेकेशन स्पॉट पर जाकर ही एंजॉयमेंट जो है वो हो सकता है। घर पर बताया वो अच्छा सा वक्त जो है ना लाइफ में ढेर सारी खुशियां लाता है, बस उसे महसूस करने की देरी। क्या कहती पब्लिक। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। मीनवाइल मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं, मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: खट खट,
7: कौन है?
6: अज्जू।
7: अज्जू कौन?
6: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
7: खट खट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: ज़ारा खान की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज़, जस्ट मानक का इसमें खूबसूरत सा तड़का। हैविंग सेड दैट, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9:07।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: देखो ये बात नहीं है कि लहंगा वगैरह तो नहीं आना, लेकिन इस वक्त जिस बात की सबसे ज्यादा दरकार है जरा उसे देख ले।
2: मिर्ची अंशु
0: Welcome back, you're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. Well, इस वक्त अगर खुशियों की बात करें तो बेशुमार खुशियां हमारी जिंदगी में 101% शामिल हो ही चुकी हैं। अब कब कहां कैसे? Well, इस वक्त सबसे बड़ी खुशी की वजह बस यही है कि सैलरी वाले दिन यानी कि अच्छे वाले दिन हमारी जिंदगी में बहुत जल्द आ रहे हैं। एंड ईदिया के तौर पर किसी चीज ने अगर सॉलिड एंट्री मार रखी है तो भैया वो है अच्छे वाले एक्सचेंज रेट्स में। इसी के साथ आपको बताते हैं कि आज का पैसा आई पे मनी में क्या ही बोलता है। Well, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 112 के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.23, इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.90, बांग्लादेशी टाका 33.65, लंकन रुपीज 90.38 एंड इसके साथ ही अगर मैं बात करूं नेपाली रुपीज की सो इट इज एट 42.15। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, ईदी भेजने का वक्त जो है वो आ ही गया है, लेकिन अगला गाना किसी ईदी से कम नहीं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci burka. हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ लेती,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। हाय, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन चलिए लाइफ के सबसे खूबसूरत पहलू की बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aajay Anshu with you. Well, अगर अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ का सबसे खूबसूरत पहलू अगर कुछ है तो वो होते हैं बच्चे। कभी आपने सोचा है कि उनकी हंसी या उनकी मासूम सी बातें या उनकी वो हरकतें शायद कभी कभी हमें अनोइंग भी लगे, लेकिन जब बाद में हम सोचते हैं तो उन्हीं बातों को सोचकर हम कहीं ना कहीं हंसने लगते हैं। यार कितने मासूम हैं, कितने नादान। इसीलिए शायद जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने अंदर के उस बच्चे को ना हमेशा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। एक इंसान के मन को अगर सोचने की कोशिश करें तो कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बच्चे के जैसा होना बहुत जरूरी है। यार बच्चे कितने प्यारे होते हैं, कभी आपने देखने की कोशिश की है कि उनकी अगर कोई गलती हो जाए या ना भी हो एंड आप उन्हें अगर डांट भी दें तो कुछ पल के बाद जब आप मनाने जाते हैं ऑटोमेटिकली खुद से चलकर दौड़ के आपके पास आते हैं। लेकिन बड़े होते होते ये हुनर ना हमारे अंदर से कहीं तो खो तो जाता है कि अगर हम एक बार किसी से नाराज हो गए तो वापस ठीक होने में, वापस मानने में न जाने कितना वक्त लग जाता है। काश एक बार फिर से हमारी जिंदगी जो है उन बचपन के दौर पे जा पाती या हमारा मन जो है बस उनके जैसा साफ हो पाता, तब समझ में आता कि दुनिया चाहे हमारे ऊपर कितनी भी मैल फेंकने की कोशिश क्यों ना करे, अगर हमारे अंदर का मन साफ है ना तो ये बात तो तय है कि कोई भी दुनिया का डर्ट जो है ना हमें छू ही नहीं सकता। बात बड़ी आम सी है लेकिन बड़ी गहरी, जरा सोच के देखना। लेकिन अभी फिलहाल स्टेडियो टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
5: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100-0813।

0: Nosegard, my home with Admitchin.
1: Hi everybody, my name is Shahrukh Khan.
2: Hi, this is Salman Khan. Khan.
3: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
4: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे?
5: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
3: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
3: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: Well, Jigar Surya and Priya Surya ki khubsurat si awaaz mein, what a lovely track it is from the film Shuddh Desi Romance. Wali pyara sa gaana to maine aapko suna diya, lekin shuddh taur pe happiness spread karne ki muhim jo chalai gayi hai, zara uski baat ho jaye.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Richie Mornings and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से ढेर सारी खुशियां जो है हमारी जिंदगी में शामिल होने वाली हैं with ईद अल अधा. We couldn't be more excited. Finally, कल जो है पहला दिन होगा जब officially हम ईद अल अधा की छुट्टी जो है सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे. लेकिन चलिए इस मौके पे मैं आपको ये बता दूं कि कतर के ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, लोकेशन हैं जहां पर छोटी छोटी खुशियां जो है आप विड्रॉ कर ही सकते हैं. और मैं बात कर रही हूँ ईदिया ATMs की. इस वक्त कुल मिलाकर 52 ईदिया ATMs सेटअप किए गए हैं कतर के प्रोमिनेंट मॉल्स में, चाहे मैं DFC की बात करूं, प्लासमंदम मॉल की बात करूं या अलमीरा लेट्स से मोइदर ब्रांच की बात करूं. और भी बहुत सारे लोकेशंस हैं, वेस्ट वॉक है, सुक वाकिफ है, सुक वकरफ है, जहां पर जाकर आप बिल्कुल 5 रियाल्स, 10 रियाल्स से लेकर 200 रियाल्स तक के नोट्स जो है विड्रॉ कर सकते हैं. घर के बड़ों को, घर के बच्चों को ढेर सारी खुशियां बस पहुंचा ही सकते हैं. यार, बचपन के दिनों में इसी बात का तो सबसे ज्यादा इंतजार होता था कि कब कोई फेस्टिवल का मौका आए, ईद आए, दिवाली आए, होली आए, घर में ना हमें नेग मिले, हमें ईदी मिले. भाई, ये पैसे बटोरने का मौका हम छोड़े ना, ये तो हो ही नहीं सकता था. तो बस इस वक्त दो दो खुशियां आपकी जिंदगी में मैं ले ही आई. ईदिया ATMs की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी गई एंड इसके साथ ही कुछ देर पहले मैंने आप तक ये बात पहुंचाई कि किस तरह अच्छे एक्सचेंज रेट्स के चलते IP मनी जो है हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां पहुंचा ही रहा है. तो एक्सचेंज रेट्स तो मैंने आप तक पहुंचा दिए थे, साथ में ये भी बता दूं कि एक्सचेंज रेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय

0: Mirchi.
1: उड़ाड़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: herkes çok eganay sana.
1: हेलो, क्या हाल चाल? अच्छा सुनो, ये बात पता चली क्या?
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, अगर बात पता चलने की बात करें तो बस यही बात की भाई साहब, कल से हमारी जिंदगी में अगर कोई दिन आ रहे हैं तो वो है अपरंपार खुशियों वाले दिन, जब ये पता हो कि बस आज का एक आखिरी दिन है जब काम करना है, अगले 5 दिन उसके बाद बेशुमार छुट्टियां, अपनी जिंदगी में एंजॉय करना है, तो भैया इंसान जो है वो खुश ना हो तो फिर क्या ही हो। तो एक बार फिर से आप सभी को एडवांस में ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। देखिए, वो बात अलग है कि हम जो है बिल्कुल पूरी तरह से आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, फिर चाहे हम गानों की ईदी की बात करें या तो फिर कतर में हो रहे सारे इवेंट्स की डिटेल्स की बात करें, टाइम टू टाइम ये सारी की सारी बातें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए ही काम करना है कि जब भी मौका मिले, जब भी आप बाहर जाएं या घर पर भी बोर हो रहे हो, बस ट्यून इन करना है फटाफट से कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। एंड इसके अलावा ये बात होता है कि आपके घर में जब शीर कोरमा बनेगा, आपके घर पर जब सेवैयां बनेगी, तो उसका एक डब्बा हमारे घर तक जरूर पहुंचेगा। इस बात का इंतजार जो है जरूर करेंगे। ईद अल अधा की आप सभी को दिल से बहुत सारी मुबारकबाद। ऊपर वाला आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए यार, और आपके दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं ना वो जरूर पूरी हों। आमीन। स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
3: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot. Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: खट खट,
7: who there?
6: बनता
7: बनता who?
6: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
7: खट खट, who there?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
8: Hello, Mirchi Helpline.
9: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
8: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
9: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
10: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट

0: भाई सुपरस्टार होने का मतलब ये तो नहीं कि उसकी प्राइवेसी आपने खरीद ली है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: क्योंकि हमारी इंडियन मीडिया तो कुछ ऐसा ही फील करा देती है। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे काफी बवाल मचा है क्योंकि सलमान खान ने एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड किया ऑन मीडिया। मतलब पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। सो बेसिकली सलमान खान किसी हॉस्पिटल गए थे किसी अपने रिलेटिव को मिलने के लिए। जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो मीडिया को ऑफकोर्स पता चल चुका था। मीडिया वेंट

टू फ्रेंजी, और वो उनकी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि का नाम चैंट करने लगे बहुत जोर जोर से, जिसपे ऑफकोर्स सलमान खान गॉट फ्यूरियस. उन्होंने वहां पे उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट लेटर ऑन ही टुक टू हिज सोशल मीडिया थ्रू 4 डिफरेंट पोस्ट, जिसके कैप्शन में उन्होंने बहुत मेजर चीज हाईलाइट की कि किस तरीके से बॉलीवुड स्टार्स या फॉर दैट मैटर सेलिब्रिटीज के पेन में मीडिया एंजॉयमेंट ढूंढने लगती है. And I totally agree to whatever he feels. क्योंकि यार अगर आज के डेट में मैं being a common person हॉस्पिटल जाती हूँ, ऑफ कोर्स मेरा टेंजेंट अलग चल रहा है, मेरा माइंडसेट अलग है, और वहां अगर मीडिया आके मेरे प्रिवेसी में इन्वेड करने लगती है, देन डेफिनेटली दैट इज प्रॉब्लमेटिक. सो इट्स हाई टाइम कि हमारे इंडियन मीडिया इस चीज को थोड़ा ध्यान पे रखे और प्रॉपर जर्नलिज्म करे. बाकी तो समझदार को इशारा काफी. यार मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La firma la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहे। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है कि हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Kaise

0: यार, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। राजकुमार हिरानी एज अ प्रोड्यूसर अपना फर्स्ट वेब सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, और ये जियो हॉटस्टार पे 3 जुलाई से स्ट्रीम करना शुरू कर जाएगी। सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, जिसमें अरशद वारसी और वीर हिरानी नजर आने वाले हैं। माइंड यू, वीर हिरानी इज गोना मेक हिज डेब्यू, एंड ये हैं राजकुमार हिरानी के साहबजादे। बाकी सीरीज का स्टोरी लाइन अभी तक बाहर नहीं आया है, बट वी डेफिनेटली नो दैट इट इज गोना बी फिल्ड विद ह्यूमर, वॉर्म्थ एंड मैडनेस। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मैं वापस आऊंगा भाई, इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल, इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार पूरी दुनिया कर रही है इन अ वे। वेल, इसका ट्रेलर आ चुका है, जिसको मैंने पर्सनली नहीं देखा एज माय ओन चॉइस, क्योंकि मैं ये फिल्म डायरेक्टली देखना चाहती हूँ इन द थिएटर्स। बट ये जरूर पता है कि मूवी में दिलजीत दोसांझ, विदांग रायना और शर्विली वाघ लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इट इज गोना बी एन ओल्ड स्कूल रोमांस, जिसमें बचपन के प्यार के बिछड़ने की कहानी है बिकॉज ऑफ पार्टीशन। फिल्म के म्यूजिक पे एक बार फिर से ये तिगड़ी आई है साथ, दैट इज ए आर रहमान, इरशाद कामिल एंड इम्तियाज अली। सो या, द होप्स आर रियली हाई। सो बॉबी देओल और अनुराग कश्यप के इस फर्स्ट कोलैब के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपकमिंग फिल्म बंदर, जिसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 21st of May को, यानी कि आज। मूवी में बॉबी देओल के अलावा सानिया मल्होत्रा, राजवी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले नजर आने वाले हैं। एंड द मूवी इज गोना हिट द थिएटर्स ऑन द 5th of June, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जिंदगी ने तो बहुत गेम खेल लिए, अब थोड़ा आप मेरे साथ गेम खेलिए यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं हर रोज ढूंढ रही हूँ मिर्ची फिल्म ची। बेसिकली इस कॉन्टेस्ट के जरिए मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालना चाहती हूँ। तो करना कुछ खास नहीं है, आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति पे जाना है, मेरे DMs में स्लाइड करके अपना फोन नंबर मुझे भेजना है और फिर मैं आपको करूंगी कॉल और आपके साथ खेलूंगी ये बॉलीवुड गेम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पे?
3: अनुष्का।
0: हाय अनुष्का, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक और बढ़िया हो जाऊंगी इफ यू प्ले दिस गेम विद मी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड का खिलाड़ी किसको बोलते हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो
3: चोरी करते हैं।
0: हाँ चोरी करते हैं।
3: 30 मार खान।
0: 30 मार खान की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: कैटरीना कैफ।
0: कैटरीना कैफ की पहली फिल्म? सोचो।
3: बूम बूम बूम।
0: क्या बात है, ये कहीं से किसी ने प्रॉम्प्ट किया है क्या आपको? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। बूम के मेल लीड एक्टर का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: क्या बात है, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो अपने बेटे के साथ नजर आए थे?
3: बंटी और बबली
0: में लीड एक्ट्रेस कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: नहीं, बट आपने इतना जो गेम खेला है मेरे साथ उसके मद्देनजर मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अनुष्का ने ये गेम जहाँ छोड़ा है उसके आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लाइक आई सेड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति, मेरे DMs में जाके अपना फोन नंबर मुझे भेजिए एंड आई गिव यू अ कॉल एंड आगे का गेम आपके साथ करूंगी कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Marhaba Doha, something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
5: खटखट
6: कौन है?
5: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खटखट, who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स खेल खेल के परेशान हो गए हो तो जरा आओ मेरे साथ गेम खेलो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ यार। बेसिकली इस गेम सेक्शन के जरिए मैं आपसे बोलती हूँ अपना नंबर देने के लिए थ्रू माई इंस्टाग्राम, और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद फिर ये गेम का सिलसिला चालू होता है जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालती हूँ यार। सो अभी कुछ देर पहले अनुष्का ने मुझे कॉल किया था, उनसे जो भी सिलसिला चला उसमें ब्रेक लग गया बीच में। अब उस पॉइंट से देयर इज दिस अनदर पर्सन विक्रांत जो मेरे साथ ये गेम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं सर?
3: यस प्लीज।
0: सो वी एंडेड एट बंटी और बबली में लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें उनका नाम टीना था।
3: कुछ कुछ होता है।
0: ऑसम, कुछ कुछ होता है के लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है किरण
3: डर
0: डर की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: जूही चावला।
0: जूही चावला की एक फिल्म जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है।
3: अक्षय कुमार के साथ नजर आई है?
0: हाँ जी।
3: ओ गॉड, दिस इज समथिंग खिलाड़ी।
0: यू आर गोइंग देयर।
3: मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम ऑसम ऑसम। तो भाई विक्रांत जी ने तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया है, तो इसी के साथ आपको भी ये टैग देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो इसी के साथ एक बार फिर से कल मिर्ची फिल्मची की खोज जारी रहेगी, बट अभी के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: ऐसे गाने जो अपने आप में कहानियां हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माई डियर बाबू मोशाय, वैसे तो हिंदी सिनेमा हमें अलग अलग कहानियां देती है फिल्मों के थ्रू, बट उन फिल्मों में भी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो अलग लेवल की कहानियां लेकर चलते हैं यार। और आज पांच को पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ उन्हीं गानों को डिस्कस कर रही हूँ। तो लिस्ट में सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी फिल्म काई पोचे से सॉन्ग मांझा के बारे में। भाई 2013 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, अमित साज, राजकुमार राव जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। एंड पर्टिकुलरली अगर इस गाने की बात करें तो अमित त्रिवेदी का म्यूजिक, उनकी आवाज अलग लेवल पे ले जाता है इस गाने को। मतलब वो कहावत हम हमेशा सुनते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू मेक लेमनेड, एंड दिस सॉन्ग इज जस्ट दैट। इसका एक लाइन है, सोई उम्मीदें जगा देंगे। इट इज जस्ट द एग्जैक्ट मोटिवेशन जो हर इंसान को अपनी लाइफ के लो फेज में चाहिए होती है। वैसे आपके बुरे टाइम में कौन सा गाना आपका मरहम बन के सामने आया है उसके बारे में मुझे बता सकते हो। हाँ, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। और हाँ, बाकी ऐसे ही और चार गानों के बारे में जानने के लिए बने रहें राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Scabana, scabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ये सिर्फ गाने नहीं कहानियाँ हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड माय डियर बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने टाइम एंड अगेन अच्छी मूवीज के साथ साथ अच्छे क्या बहुत ज्यादा अच्छे गाने भी दिए हैं हमें, जो अलग लेवल की कहानी अपने साथ लेकर आती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ वैसे ही गानों को डिस्कस कर रही हूँ, तो जरा अपनी लिस्ट रेडी रखिए, कहीं आपकी और मेरी चॉइस सेम ना हो जाए। चलो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द फिल्म काई पोचे। अब नंबर दो पे बात करते हैं दिल चाहता है मूवी से सॉन्ग कैसी है ये रुत के जिसमें, हाँ हाँ हाँ यही वाला गाना। सो दिस मूवी वॉज रिलीज इन द ईयर 2001, फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सैफ अली खान, आमिर खान, अक्षय। पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ वैसे ही गानों को डिस्कस कर रही हूँ, तो जरा अपनी लिस्ट रेडी रखिए, कहीं आपकी और मेरी चॉइस सेम ना हो जाए। चलो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द फिल्म काई पोचे। अब नंबर दो पे बात करते हैं दिल चाहता है मूवी से सॉन्ग कैसी है ये रुत के जिसमें, हाँ हाँ हाँ यही वाला गाना। सो दिस मूवी वॉज रिलीज इन द ईयर 2001, फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सैफ अली खान, आमिर खान।

0: लव, क्योंकि पर्टिकुलरली ये गाना हमें हर बार वहीं लेकर जाता है
1: जब फूल और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जब हमें बारिश से थोड़ा ज्यादा प्यार हो जाता है और हम हर जगह बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज देखते हैं, इनफैक्ट अपने पेट में भी महसूस करते हैं। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे बात करते हैं फिल्म लुटेरा से सॉन्ग शिकायतें के बारे में। वंस अगेन अमित त्रिवेदी क्रिएटेड हिज मैजिक एंड टॉकिंग अबाउट द फिल्म, ये विक्रमादित्य मोटवानी ने डायरेक्ट किया था, विच रिलीज इन द ईयर 2013, जिसमें रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल्स में थे। ये गाना जो है ना मूवी का सबसे क्रूशियल गाना भी है। बेसिकली इस गाने के थ्रू हम एक चेंज्ड वरुण को देखते हैं जो सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर पाखी के लिए स्टैंड लेना चाहता है अपनी लाइफ में। फिलहाल लिस्ट में और भी दो ऐसे गानों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes,

0: फिल्मों के अंदर चलने वाले फिल्म की बात करें।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: फिल्म आई डियर बाबू मोशाय टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमें बहुत ही अमेजिंग फिल्में मिली हैं, लेकिन फिल्मों के अंदर भी कुछ फिल्में होती हैं। अब गाने यार, और कुछ गाने ऐसे उभर के आते हैं ना जो अलग लेवल की कहानी खुद में लेकर आते हैं, राइट? और आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ वैसे ही गानों को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द फिल्म काई पोचे, फिर हमने कैसी है ये रुत की बात की फ्रॉम द फिल्म दिल चाहता है, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट शिकायतें फ्रॉम द फिल्म लुटेरा, अब नंबर चार पे बात करते हैं ऐसे ना देखो फ्रॉम द फिल्म रांझना जो साल 2013 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय, जिसमें धनुष, सोनम कपूर और अभय देओल लीड रोल्स में थे। एंड एआर रहमान का मैजिक तो भाई कूट कूट के भरा हुआ है इस पूरे के पूरे एल्बम में, और इस गाने में पर्टिकुलरली उनकी आवाज, ओ हो हो हो हो हो हो हो हो, मतलब एक तरफ ये गाना हार्ट ब्रेकिंग है, वहीं दूसरी तरफ टूटे हुए दिल को शांत भी कर देता है। एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज अबाउट द थिंग्स जो धनुष का कैरेक्टर कुंदन सोनम कपूर के कैरेक्टर जोया से कहना चाहता है। मूविंग ऑन, नंबर पांच पे बात करते हैं सॉन्ग साहिबा के बारे में फ्रॉम फिल्म फिलौरी जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय अंशाय लाल, जिसमें अनुष्का शर्मा, सूरज शर्मा और दिलजीत दोसांझ लीड रोल्स में थे। वेल, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज अ स्टोरी ऑफ टू फॉरगॉटन लवर्स, वो लवर्स जो एक साथ रहना तो चाहते थे बट समाज की वजह से रह नहीं पाए, जिसमें एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने साथ होने को कहता है। काफी ज्यादा रिलेटेबल। खैर, मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई ऐसा ही गाना ऐड करना चाहो तो प्लीज मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करो, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: खट खट,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi, it's hot.

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप टॉप टॉप ट्रेंडिंग। राजकुमार हिरानी एज अ प्रोड्यूसर अपना फर्स्ट वेब सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो और ये जियो हॉटस्टार पे 3 जुलाई से स्ट्रीम करना शुरू कर जाएगी। सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने जिसमें अरशद वारसी और वीर हिरानी नजर आने वाले हैं। माइंड यू वीर हिरानी इज गोना मेक हिज डेब्यू एंड ये हैं राजकुमार हिरानी के साहबजादे। बाकी सीरीज का स्टोरी लाइन अभी तक बाहर नहीं आया है बट वी डेफिनेटली नो दैट इट इज गोना बी फिल्ड विद ह्यूमर, वॉर्म्थ एंड मैडनेस। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मैं वापस आऊंगा भाई, इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार पूरी दुनिया कर रही है इन अ वे। वेल इसका ट्रेलर आ चुका है जिसको मैंने पर्सनली नहीं देखा एज माय ओन चॉइस क्योंकि मैं ये फिल्म डायरेक्टली देखना चाहती हूँ इन द थिएटर्स, बट ये जरूर पता है कि मूवी में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रायना और शर्वरी वाघ लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इट इज गोना बी एन ओल्ड स्कूल रोमांस जिसमें बचपन के प्यार के बिछड़ने की कहानी है बिकॉज ऑफ पार्टीशन। फिल्म के म्यूजिक पे एक बार फिर से ये तिगड़ी आई है साथ, दैट इज एआर रहमान, इरशाद कामिल एंड इम्तियाज अली। सो या द होप्स आर रियली हाई सर। बॉबी देओल और अनुराग कश्यप के इस फर्स्ट कोलैब के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपकमिंग फिल्म बंदर जिसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 21 मई को, यानी कि आज। मूवी में बॉबी देओल के अलावा सानिया मल्होत्रा, राजवी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले नजर आने वाले हैं एंड द मूवी इज गोना हिट द थिएटर्स ऑन द 5 जून, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6 89.6 मिर्ची फ्रेश माल,
2: स्वैग स्टाइल और बोल्ड एनर्जी के साथ सुनो लिपस्टिक।

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो, इससे पहले कि ये हमारी कमान संभाले, क्यों ना हम जो हैं इनकी कमान संभाल ही ले।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू द नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मिर्ची। वेल, इतना बता दूं, इस वक्त सूरज चाचू ने हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा कोहराम मचाया हुआ है कि इनका बस चले तुम्हारी जिंदगी को किस तरह से ड्राइव करना है ये ही डिसाइड कर लें। बकायदा हम इन्हें ये पूरी की पूरी सहूलियत जो है ना वो प्रोवाइड कर दें, अवेल कर दें। अवेल सिद्धार्थ, इतना ही कहना चाहूंगी, धूप से इस वक्त बचें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, क्योंकि अगर इस वक्त मौसम के हालचाल को आप देखने की कोशिश करेंगे तो फाइनली गर्मी जो है अपनी चरम सीमा में पहुंचने की कगार पर है। आज के टेम्परेचर पे अगर हम नजर डालें, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44। फीलिंग जो है 50 से कम नहीं है, सच कह रही हूं, तुम्हारी उम्र नहीं, वेदर की बात कर रही हूं। साथ ही मिनिमम को देखने की कोशिश करें, सो इट इज अराउंड 32-33। तो बस एसी या रिमोट को अपना पक्का वाला दोस्त बनाए, पानी जो है हर वक्त आपके साथ हो, इन कलेजे की ठंडक के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future, call now 3100-0813.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wird wala burka. Milci, burka.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है, वो क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पा रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई, अचानक ऐसा हो गया। रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं, जो हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू
2: कुकुड़
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी,
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ये दुनिया, ये महफिल और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो बाबू मोशाय, आज की ये जो दो प्रजातियां हैं वो बॉसेस के मद्देनजर डिसाइड की जा रही हैं। ओहो, कान खड़े हो गए। बेसिकली ये बॉसेस जो है ना अप्रेजल टाइम पे नजर आते हैं, जिसमें पहली प्रजाति का जो बॉस है वो अगर किसी के ऊपर गाज गिराना चाहता है, मतलब किसी को अगर निकालना चाहता है, तो उसको सीधे से जाके बोलता है कि ब्रो देख यार, मार्केट में ना तू ढूंढना शुरू कर दे जॉब। हाँ नहीं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, मुझे ना स्केप्टिकल लग रही है चीज़ें तेरे लिए। वहीं दूसरी प्रजाति का जो बॉस होता है वो प्रॉपर माहौल बनाता है, मतलब ये अगर किसी को निकालना चाहेगा ना तो उसको उसके काम को लेकर काफ़ी सारे कटाक्ष मारेगा। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब इस तरीके से काम किया जाता है? दिस इज़ वॉट यू हायर्ड फॉर? घास छिलने आ रहे हो क्या यहाँ पे? एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वैसे आपके आसपास इन दोनों में से कौन सी प्रजाति के बॉसेस नजर आते हैं, या इनसे भी कुछ अतरंगा वाला है, तो उसके बारे में मुझसे शेयर करो ना। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे हूँ। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।

द होल थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया. अब जब एक्सचेंज के रेट इतने कमाल हो तो पैसे को हम सर आंखों पे ना बिठाएं तो किसे ही बैठाएं. हैविंग सेड दैट आईपी मनी में अच्छे एक्सचेंज रेट्स का बोलबाला है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टाका 33.67, नेपाली रुपीज 41.79 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 88.27. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स ऑल एंजॉय.

0: about Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एक मर्द बना था पूजा भट्ट का स्टंट डबल। मिर्ची पे ट्यून इन हुआ, मैं हूँ आपके साथ श्रुति एंड यस यू हर्ड इट राइट। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ धुरंधर के एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब के बारे में। सो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया कि फिल्म जख्म जो 1998 में रिलीज हुई थी डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट, जिसमें पूजा भट्ट नागार्जुन और अजय देवगन के साथ लीड रोल्स निभाती नजर आई थी, उस फिल्म में एक फायर सीक्वेंस था जिसमें पूजा भट्ट की जगह पे एजाज गुलाब ने उनका स्टंट डबल बन के वो सीन शूट किया था। ऑल्दो ये सीक्वेंस ही फिल्म से डिलीट कर दिया गया, बट Yes, एक मर्द बोले तो एजाज गुलाब बने थे पूजा भट्ट के स्टंट डबल, which was quite a normal thing back then, क्योंकि उस वक्त female stunt doubles की कमी हुआ करती थी, and this is how things used to work. तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो मैं ढूंढकर आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके, एंड आई विल डू द होमवर्क फॉर यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: कल रात तो दिल खुशी हो गया, रात में सोने से पहले मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखी, मैंने देखी द मूवी प्रिटी वुमन।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और देखो, पता है, सोने से पहले जो कुछ आप पढ़ के या देख के या सोच के सोते हो ना, वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके के ख्वाब आएंगे और आपकी अगली सुबह जो है वो किस मूड के साथ शुरू होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ का कि रात में सोने से पहले हमने क्या सोचा, हमने अपना दिमाग कहाँ लगाया। सो मैंने सोचा कि यार, मतलब अभी क्या हो रहा है कि ना हम फोन के अंदर इतना ज्यादा घुसे हुए हैं कि मैंने कहा फोन को साइड में रखते हैं और अब ऐसी मूवी देखते हैं जिससे कि भले मैंने मूवी पता नहीं कितनी बार देखी हुई है, लेकिन स्टिल आई वॉन्टेड टू डाइवर्ट माई माइंड एंड आई पिक्ड अप द मूवी प्रिटी वुमन एंड आई वॉच दिस फिल्म बिकॉज मुझे जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गियर की ये फिल्म बड़ी अच्छी लगती है और ये जोड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। एंड बाय द वे, ये जो फिल्म है ना, इसका एक सीन है, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो देखना जरूर, और अगर देखी है तो आपको ये सीन शायद याद होगा जब रिचर्ड गियर जूलिया रॉबर्ट्स के सामने एक ज्वेलरी बॉक्स रखते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स जो है शी रीचेस आउट फॉर द पीस ऑफ ज्वेलरी और एकदम से वो बॉक्स बंद कर देते हैं, तो यू नो वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचती है एंड शी इज अ बिट स्टार्टल्ड एंड वो एकदम से ना, मतलब शी ब्रेक्स इनटू अ लाफ्टर और वो लाफ्टर उनकी बड़ी ऑर्गेनिक लगती है, बहुत प्यारी लगती है। एंड दैट सीन वॉज एक्चुअली अ सीन जो कि डायरेक्टर ने प्लान किया था एज अ प्रैंक ऑन जूलिया रॉबर्ट्स, बिकॉज जूलिया रॉबर्ट्स जो कि एट दैट टाइम वॉज वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, वो अक्सर सेट्स पर ना बड़ी स्लीपी हुआ करती थी, उनको हमेशा ही नींद आ रही होती थी, तो उनकी नींद भगाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार ये प्रैंक करते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स को एकदम से ना चौंका देते हैं, तो उनकी नींद वींद जो है ना वो भाग जाएगी। और वो सीन जैसा शूट हुआ वैसा ही रखा गया सो दैट वो ऑर्गेनिक भी लगे और ऑफकोर्स उस सीन के साथ एक याद जुड़ी रहे जो आज इतने सालों बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नहीं, अब जब अच्छी जोड़ियों की बात की जा रही है तो हॉलीवुड से बॉलीवुड पे आते हैं यार, अपना एरिया है, और बॉलीवुड की 90s और अर्ली 2000 की कुछ फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ियां हैं जो हम सबके दिल को छू गई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे यही सारी बातें करने वाली हूँ। अभी के लिए तो फिलहाल मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virba la murga. Mirci, murga.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख
1: से। अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे हैं भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले।
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

दोस्ती के नाम पर अगर कभी मैं दुआ देती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि दोस्ती हो तो काजोल और शाहरुख जैसी, जो कि ऑन स्क्रीन तो दिखाई देती देती है लेकिन ऑफ स्क्रीन उससे ज्यादा तगड़ी है। तभी तो ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी केमिस्ट्री

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड शाहरुख खान एंड काजोल की जोड़ी ओ हो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक भी इस जोड़ी को हम मिलेनियल्स नहीं भूल पाए। ये जोड़ी तो इनफैक्ट बेंचमार्क बन गई है यार बॉलीवुड की जोड़ियों के बीच में कि यार ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा स्पार्क, इतना फन हमें बहुत कम नजर आ रहा है तब से लेकर अब तक, नहीं क्या? एंड यू नो व्हाट, इन दोनों ने DDLJ में तो काम किया ही किया, वहां से तो ऑफकोर्स इस जोड़ी का और काम हो गया, लेकिन बाजीगर में सबसे पहले इन दोनों ने काम किया था। एंड बाजीगर का एक किस्सा है ऑफ द स्क्रीन ऑफ कोर्स कि हुआ ये था कि जो शूट था वो 1 जनवरी को शुरू हुआ था एंड 31 की रात को सब पार्टी करके यू नो विद अ हैवी हेड, क्योंकि कोई सोया था कोई नहीं सोया था। जब सेट पर पहुंचे तो ऑफकोर्स एक रात पहले तो उन्होंने बहुत ही भारी भरकम पार्टी की हुई थी एंड ही वॉज वेरी स्लीपी एट दैट टाइम। ऑन द कॉन्ट्ररी काजोल वो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ बातें करती चली जा रही थी, जो उनको मिल रहा था उससे बात करती चली जा रही थी। बट शाहरुख खान वॉज वेरी साइलेंट क्योंकि उनका ना सर भारी हो रहा था, उन्हें नींद आ रही थी, तो ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड कि वो ना चैटर बॉक्स बने उस टाइम पर। काजोल को लगा कि ये तो अलग ही निकल के आया बंदा, इसके तो एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहे हैं। वो तो लेटर ऑन इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो सेट हुई, बात हुई, तो पता लगा कि नहीं भाई बंदा इतना एटीट्यूड वाला है नहीं। ऐसे ऐसा हुआ था कि 31 की रात को जब बंदे ने पार्टी करी है तो 1 की सुबह वो कैसे चर्पी हो सकता है। बस फिर क्या, उसके बाद से लेकर आज तक तो ऊपर वाले के करम से इनकी दोस्ती की गाड़ी को ब्रेक नहीं लगे। टचवुड इनकी जोड़ी ऊपर वाला सलामत रखे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का उसूल है मैडम. नो सॉरी, नो थैंक यू.
2: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: शाहरुख एंड माधुरी की जोड़ी या फिर सलमान खान और माधुरी की जोड़ी? आई थिंक आई लाइक्ड सलमान एंड माधुरी की जोड़ी मोर ऑन स्क्रीन देन शाहरुख खान एंड माधुरी की जोड़ी, नहीं क्या?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये ना मेरे लिए भी बचपन में टफ हो जाया करता था कि मुझे कौन सी वाली जोड़ी ज्यादा पसंद आती है। और आज मिडे मोहब्बत की गाड़ी को हम 90s के गियर में डालते हुए 90s और अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट और फेमस जोड़ियों के बारे में बात करें, जिनमें से एक है सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी। एंड वेल, ये काफी हिट जोड़ी थी ऑफकोर्स। इन लोगों ने हम आपके हैं कौन साथ में करी, साजन करी, एंड ये दोनों ही मूवीज बड़ी हिट थी। इनफैक्ट जब हम आपके हैं कौन के लिए कास्टिंग हो रही थी एंड एट दैट टाइम सलमान और माधुरी जब ऑन स्क्रीन नजर आए तो काफी सारे लोगों ने एक पॉइंट छेड़ा था कि माधुरी दीक्षित सलमान खान से ज्यादा बड़ी लग रही है ऑन स्क्रीन। बट कुछ भी कहो, हमें तो जोड़ी पसंद आई थी और उसके बाद तो इन लोगों ने और भी फिल्में साथ में करी थी। इनफैक्ट इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी काफी अच्छी चली थी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब ये लोग हम आपके कौन के लिए शूटिंग किया करते थे तो माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान बहुत मस्करी करते हैं ऑन द सेट्स ऑफ द मूवी, और उससे होता ये था कि सभी का मूड एकदम हल्का बना रहता था और शूट करने में मजा भी बहुत आता था। यार, ऐसे कलीग्स होना जो वक्त के साथ दोस्त बन जाए तो फिर बात ही क्या है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
2: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Butt.
5: Butt? अरे butt हूँ?
4: Butt, butt, butt, butt, butt, butt, butt. Bike बहुत आवाज करती है.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: बाइज्जत बामुलाइजा होशियार, बिकॉज अब उस जोड़ी की बात कर रहे हैं मेरे यार जो 90s में सबसे ज्यादा हिट जोड़ी मानी जाती थी, जूही चावला एंड आमिर खान की जोड़ी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज मिड डे मोहब्बत पर जिक्र छिड़ा है 90s एंड अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज का, जिनमें से ऑफकोर्स जूही चावला एंड आमिर खान की जोड़ी मुझे बड़ी पसंद आया करती थी। इनफैक्ट आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू टाइम्स जब ये दोनों और मूवीज साथ में करे, और इनकी अगर कोई न्यू रिलीज होती थी तो आई यूज टू बी वेरी एक्साइटेड एज अ किड। माई गॉड, मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी कैसा होता था। लेकिन इनकी जोड़ी की केमिस्ट्री एकाध फिल्म पुरानी नहीं थी, इन लोगों ने तो अपना करियर ही साथ में किया था यार। कयामत से कयामत तक वॉज द फर्स्ट फिल्म फॉर बोथ ऑफ देम। एंड इनफैक्ट जब कयामत से कयामत तक शूट हो रही थी ना, तो उस शूट के दौरान एक ऐसा सीन था जिसमें जूही चावला को आमिर खान को थप्पड़ मारना था। अब उनसे थप्पड़ तो मारा ही नहीं जा रहा था, उन्हें बार बार हंसी आ रही थी उस सीन को करने में। एंड बार बार कट होता, एक्शन होता, थप्पड़ मारती फिर हंसने लग जाती फिर कट हो जाता। पता नहीं कितने थप्पड़ इस चक्कर में आमिर खान ने खा ली होंगी। लेकिन सबसे बड़ा थप्पड़ तो इनकी दोस्ती को तब लगा जब इन दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया। एंड दैट हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ इश्क। जब ये लोग शूट कर रहे थे तो आमिर खान एंड अजय देवगन बोथ आर अ बिग प्रैंकस्टर्स ऑन द सेट्स ऑफ एनी फिल्म दैट दे डू। एंड यहाँ पर दो प्रैंकस्टर्स साथ में थे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि सबको शिकार बनाते हुए जूही चावला भी एक दिन शिकार बनी इनके प्रैंक्स की, जिस पर जूही चावला को बहुत गुस्सा आया। उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, सो मच सो दैट कि वो उस दिन शूट छोड़ के घर चली गई, जिसको लेकर आमिर खान बड़े नाराज हुए कि ये तो बड़ा ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड हो गया। वो डिफरेंस इन लोगों का कई सालों तक चला। एंड इवेंचुअली इन लोगों ने अपने इस मनमुटाव को आपस में ही बातचीत करके सुलझा लिया था, बिकॉज एट दैट टाइम राई का पहाड़ नहीं बनता था मीडिया के अंदर। दोस्ती को दोस्त आपस में ही सुलझा लिया करते थे, बाहर जाके चार लोगों को नहीं बताया करते थे। एनीवेज, आजकल तो एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: virtua la burga. Milci, burga. हेलो।
2: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दी जाए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भी है।
1: 90s की एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने जब ऑन स्क्रीन काम किया तो आग लगाई, और ऑफ स्क्रीन भी इनके किस्सों ने काफी आग लगाई।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and I'm talking about अक्षय कुमार and Raveena Tandon की जोड़ी, जो कि 90s की on-screen सबसे popular जोड़ीज में से एक थी। Of course, मोहरा का टिप टिप बरसा पानी, ये गाना तो आज तक कोई भी नहीं भुला पाया है जानी। आज भी ये हर पार्टी की शान होता है। और जब ये गाना शूट हो रहा था, at that time Raveena Tandon ठंड से कांप रही थी। एक तो पानी में कंटिन्यूसली डांस करना, ऊपर से उन्होंने कोई बहुत ही मोटा कपड़ा नहीं पहना हुआ था। एवरीबडी नोज कि वो पतली सी कोई साड़ी थी जो पता नहीं कौन से मटेरियल की थी, लेकिन डेफिनेटली पतली थी, तो ऑफकोर्स ठंड तो लगनी लगनी थी। इस पर अक्षय कुमार ने खुद ये तारीफ करी थी रवीना की कि उन्होंने इस गाने के अंदर तो कमाल ही कर दिया था। धीरे धीरे कर इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो ऑफ स्क्रीन में भी तब्दील होती गई, एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर सो मच सो दैट कि एट अ पॉइंट दे वर एंगेज्ड टू ईच अदर। But then things did not fall into place, जिससे कि रवीना टंडन को डेफिनेटली बहुत बड़ा धक्का लगा था उस जमाने में, because जब engagement हो जाती है तो अगला कदम शादी होता है, and she was looking forward to that when she got to know कि अक्षय कुमार सिर्फ उनके नहीं है। And a lot happened in the media and in interviews, जिसके बाद इन लोगों ने कभी साथ में काम नहीं किया। But I was really surprised to see them both sharing the same stage किसी reality show पर। And of course, दोनों ही अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं। Professionalism की बात की जाए, तो let bygones be bygones वाला मामला ही सेट रहता है। क्या बोलते हो? अभी के लिए तो अपन आगे बढ़ते हैं with the next track, you stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ऋतिक रोशन की जब डेब्यू फिल्म आई थी तो उन्होंने पूछा कहो ना प्यार है, तो एक आध लड़कियों ने नहीं, हजारों लाखों लड़कियों ने एक साथ कहा होगा कि हाँ भाई प्यार है, तुम एक बार हाँ तो बोलो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड विद मोहब्बत पर आज 90s एंड अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज के बारे में बात की जा रही है, और जिनमें से एक ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल की जोड़ी भी होती है। हालांकि ये जोड़ी वन फिल्म मंडरी बन के रह गई थी, लेकिन ये फिल्म जितना हिट हुई थी ना भाई, मतलब इनकी जितनी भी आगे की फिल्म एज ए जोड़ी फ्लॉप हुई थी ना, उसका भी भुगतान शायद कल होना उन्हें कर दिया होगा। लेकिन आपको पता है, इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन ने तो ऑफ कोर्स 3 से 4 महीनों तक डांस की और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने अपने स्टंट्स भी खुद ही किए थे। वहीं अमीषा पटेल, उन्होंने तो भैया इस फिल्म को करने के लिए अपने कॉलेज को ही छोड़ दिया था, और जो स्टारडम शायद इन लोगों ने आगे जाके नहीं देखा, वो इस फिल्म ने एक बार और पहली बार में ही इन दोनों को दिखा दिया था। आई हैव नेवर सीन अ डेब्यू फिल्म गोइंग सच अ बिग हिट। ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट थी यार। सैडली ये फिल्म करने के बाद जितनी बार भी प्रोड्यूसर्स ने इनके ऊपर पैसा लगाया और फिल्म बनाने की कोशिश करी जस्ट सो दैट दे कुड बैंक ऑन कहो ना प्यार है की हिट जोड़ी, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वो जो मोमेंट था जब कहो ना प्यार है में ये जोड़ी हिट हुई थी, वो मोमेंट आज भी सभी को याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो दोनों ने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
5: कौन है?
6: दवे।
5: दवे कौन?
6: The way you love me. आई हाय मर जावा।
5: खटखट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अगर नंबर वन होने के मामले में डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी हिट थी, तो भाई करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी भी कोई कम नहीं थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s और अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज के बारे में बात हो रही है भाई, जिनमें से बात तो खत्म ही नहीं हो सकती विदाउट टॉकिंग अबाउट गोविंदा एंड करिश्मा कपूर की ऑन स्क्रीन जोड़ी। ये इतनी श्योर शॉट कमाल हिट जोड़ी हो गई थी कि इस जोड़ी ने न जाने कितनी सारी बॉक्स ऑफिस हिट्स दी है, जिनमें से कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, ये इन तरीके की फिल्में निकल निकल कर आई थी। इनफैक्ट इन दोनों की केमिस्ट्री की अगर बात की जाए ना, तो सेट पर सबको पता था कि गोविंदा और करिश्मा कपूर बिना किसी रीटेक के लंबे लंबे डांस स्टेप्स एक ही टेक में कर लिया करते थे। इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री थी इन दोनों की। एंड इस बात के तो डेविड धवन खुद गवाह रहे हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि इन दोनों की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त है कि डायरेक्टर को बस एक्शन और कट बोलना होता है, बाकी सारा काम तो ये दोनों ही कर लेते हैं, विच इज सच अ रिलीफ फॉर अ डायरेक्टर। इनफैक्ट करिश्मा कपूर तो खुद भी मानती है कि गोविंदा उनके सबसे अच्छे ऑन स्क्रीन पार्टनर रहे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 90s या अर्ली 2000 की कौन सी ऐसी फेवरेट जोड़ी है आपके दिल और दिमाग में, जो ऐसी छाई हुई है कि आप चाहते हो कि आज भी ये जोड़ी ऑन स्क्रीन नजर आए, तो वो कौन सी जोड़ी होगी? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
2: मोबाइल पे
1: और क्या,
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले तो नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची।

0: सैफ अली खान और प्रीति जिंटा ने हालांकि ऑपोजिट ईच अदर बहुत सारी फिल्में नहीं करी हैं, लेकिन जितनी करी हैं वो काफी इम्पैक्टफुल थी फॉर देम टू बी इन द लिस्ट ऑफ 90s एंड अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा ने ऑन स्क्रीन स्पेस शेयर करी थी इन द फिल्म दिल चाहता है, लेकिन एट दैट टाइम प्रीति जिंटा वाज प्लेइंग अ रोल ऑपोजिट आमिर खान एंड देन केम क्या कहना, जहां पर इन दोनों ने साथ में काम तो किया लेकिन स्टिल बाय द एंड ऑफ द फिल्म ये जोड़ी साथ में नहीं थी, चंद्रचूर सिंह आ गए थे बीच में। इनकी जोड़ी का साथ तो किस्मत ने तब दिया जब फाइनली कल हो ना हो में देवर ऑपोजिट ईच अदर। हालांकि स्टिल देयर वाज अ शाहरुख खान, मगर कहीं ना कहीं तो इनकी केमिस्ट्री भी इस फिल्म के अंदर थी, जिसकी वजह से फाइनली हमको इनकी फुल ऑन केमिस्ट्री की परफॉर्मेंस देखने को मिली इन द फिल्म सलाम नमस्ते। मुझे इनकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी लगी थी ना इस फिल्म के अंदर, इतनी प्यारी लगी थी कि मैं तो दुआ कर रही थी यार कि और फिल्मों में काम करे, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सैडली। और कल हो ना हो के सेट से एक बड़ा ही मजाकिया किस्सा है, जहां पर एक ऐसा सीन था जहां पर यू नो सैफ अली खान को एक लंबा हिंदी का डायलॉग बोलना था जो उन्हें याद ही नहीं हो रहा था। अब शाहरुख खान और प्रीति जिंटा साथ मिलकर सैफ अली खान की सेट पर चुटकी ले रहे थे, हंसी मजाक चुटकियां लेते लेते फाइनली वो वक्त भी आ गया जब सैफ अली खान ने उस सीन को ना बिल्कुल स्टाइलिश अंदाज में कर डाला और वो फिल्म का एक यादगार मोमेंट बन के रह गया था। वेल, अगर आज के टाइम पर आपकी किसी 90s या अर्ली 2000 की बॉलीवुड की ऐसी कोई जोड़ी है जिसको वापस से कास्ट करना चाहिए तो वो कौन सी जोड़ी होगी, डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए अगला गाना आ रहा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बाजीगर फिल्म से कुमार सानू और अनु मलिक की आवाज में ये गाना कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ये गाना नहीं था यार, ये तो जादू था। काउंटडाउन शो में जब ये गाना आता था ना, तो माय हार्ट यूज्ड टू स्किप अ बीट, बिकॉज इस गाने में कुछ तो ऐसी बात थी, है और हमेशा रहेगी यार। वो क्या है ना कि म्यूजिक इज थेरेपी, और इस गाने में आई थिंक, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार अनु मलिक ने कुछ तो ऐसा दिमाग लगाया ही होगा कि इस गाने का जादू सबके दिलों पर चल जाए। और इस गाने की म्यूजिक के अलावा इस गाने में बेस्ट पार्ट वॉज शाहरुख खान। आई जस्ट लव दैट रेड जैकेट जो उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ पहना हुआ था इन द फिल्म, एंड ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम यार। आज भी अगर कोई बंदा वो कॉम्बो का कपड़ा पहन के आता है ना मेरे सामने, तो मेरे सामने शाहरुख खान ही आता है बॉस। एंड जस्ट इन द नेम ऑफ शाहरुख खान उस बंदे पर दिल भी आ सकता है। लेकिन इस गाने के लिरिक्स में एक बड़ी खास बात कही गई है कि उफ तेरी दिल लगी दिल को जलाने लगी, दिल रुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। ये सब लड़कियों के लिए बोल देती हूँ मैं कि देखो यार, जितने नखरे आप दिखाते हो ना, उतने ही लड़के आपके दीवाने होते चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे जितने भी गाय फ्रेंड्स हैं ना, उनसे कंफर्म करके ही मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि ये जो बात कही गई है ना, ये सही कही गई है। क्योंकि क्या है ना कि ये शायद ऊपर वाले ने नियम ही ऐसा बनाया कि लड़कियां जो है वो थोड़े नखरे दिखाएं और लड़के जो है वो उनके थोड़े नखरे उठाएं। अच्छा भी लगता है और मजा भी आता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए टू मच हो जाए ना, तो हर एक चीज का टू मच इज नॉट गुड बॉस। चलो जी, नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप मुझसे मिल सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए यही गाना वही अगला गाना है जो आपके लिए आ रहा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
3: Cut, cut.
4: Who that?
3: Jassi.
4: Jassi? Kaun si wali Jassi?
3: Jassi who has come, auntie ji?
4: Cut, cut. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के 4, मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट

ओए होए, शरारत सिखावा, क्या गाना बनाया है शाश्वत सचदेव जी ने, और मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलिस की आवाज ने तो धमाल मचा दी यार। एक ऐसा गाना जो आपको नाचने पे मजबूर कर दे, बस तभी तो इतना ट्रेंड किया, इतनी रील्स बनाई। और अब मैं आ चुकी हूँ, यानी कि मिर्ची ईशा आ चुकी है आपको शाम का डोज देने। जी हाँ, शाम शानदार बनाने मैं आ चुकी हूँ और आपको सुनाने वाली हूँ खूबसूरत गाने, उसके साथ साथ खूबसूरत बातें। मैं आपको बताने वाली हूँ इवेंट, शोज, एग्जीबिशन, जो भी होने वाला है आपकी कतर में आने वाले वीक डेज में। वीक डेज है लेकिन छुट्टियां भी हैं, ईद आ चुकी है, और ईद के समय जो हमारा कतर होता है ना, इस समय जो चमकता है, इस समय जो खुशियां बढ़ती हैं भाई, क्या मजा आता है। बस उस मजे को एंजॉय करने के लिए और इवेंट्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स ऑल।

0: पता नहीं।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा, उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घर पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पहले रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश हो नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं,
3: आशीष। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
1: Marhaba Doha, something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: तो इमोशंस फूट फूट के बाहर आ जाते हैं। और रही बात हमारे मिर्ची मॉमी अवार्ड्स की, तो वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, ऑडिशंस के लिए अगर आपने अपनी रील नहीं भेजी, एक मिनट की वीडियो नहीं भेजी, रील कुछ भी बना के भेजिए हमको 5000 1896 पे। अपने बच्चे के साथ जो प्यार भरा बॉन्ड है ना, उसको शेयर कीजिए हमारे साथ, ताकि हम लोग आपकी वीडियोस को देख के आपको सिलेक्ट करके आपको बुलाएं ऑडिशन के लिए, और हमारा मिर्ची मॉमी अवार्ड्स बन जाए एकदम एक नंबर, जो हमेशा से एक नंबर रहता है। बेस्ट मॉमी को मिलेगा बेस्टेस्ट मॉमी होने का खिताब, और भी बहुत कुछ, बहुत मस्ती होगी। बस उसके लिए करना क्या आपको, आपको जल्दी से जाके रजिस्टर करनी है अपनी एंट्रीज 5000 1896 पे, जल्दी से भेज दीजिए। और सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

मेरे को किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों बोलते हैं यार पंजाबियों की शान वक्री। ओ भाई पंजाबियों में जब ढोल बजता है ना तो डीजे बंद हो जाता है, तो शान तो वक्री हुई ना। और फिर जब ढोल के ऊपर नाचना बनता है बस डीजे बन तो होएगा ही ना, तो ऐसी पटाखेदार इवेंट आया ना सही में, पटाखा मतलब कि फायरवर्क्स होने वाले हैं आपके कतर में। जी हाँ, ईद की खुशी में जब पटाखे चलेंगे, फायरवर्क्स होंगे आसमान में, तो भाई आसमान तो चमकेगा ही, साथ ही साथ आपकी आंखें भी चमक जाएंगी उस फायरवर्क के नशे में। या पटाखों का आगाज हो जाएगा कतारा में, एंड 27 मई से लेके 29 मई तक आपको ये फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। भाई बहुत एक्टिविटीज होंगी वहाँ, बच्चों को गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ फूड एक्टिविटीज, अ फुल फन जो आपको चाहिए ईद में वो आपको मिलेगा। तो भाई जाना तो बनता है ना, तो जाइए और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ इस ईद, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
4: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: खट खट, अखबार।
8: अखबार हु?
7: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
8: खट खट, हु दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. 89.6, 89.6, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: अपनी सनस्क्रीन और अपना चश्मा लगा के रखिए, क्योंकि अब हालचाल सुनाएंगे हम।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, वेदर की बात करें तो भाई 38 डिग्री सनी, फील्स लाइक 41। हाँ जी, फील होगा आपको 41, लेकिन है 38। बहुत ही गर्मो गर्मी होने वाली है और आने वाला टाइम और भी गर्म होने वाला है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, एक्सेसिव हीट पूरे दोहा कतर में होने वाली है। और 38 डिग्री तो सुबह का रहेगा एंड शाम को अगर टेम्परेचर गिरेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा 30 डिग्री तक, तो सिर्फ 8 डिग्री ही कम होगा। एंड गर्मी बहुत होने वाली है भाई साहब। अपना ध्यान रखिए, अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए भाई, पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एसी एक ऐसी चीज है ना जो आपको पानी ना पीने पे मजबूर करती है। तो वो नहीं करना है, पुट योर रिमाइंडर ऑन योर फोन कि भाई मेरे को पानी पीने का है, तो भाई पीजिए और एंजॉय करिए मेरे साथ, यानी मिर्च शिक्षा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन एट साथ।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Mirchi.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
3: साहब जी को ऐसे तो गलत बात है, साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
2: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: उसने कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा? मैंने तो बस सूचित करना था, करने दे। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
3: पकड़ ले।
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM, मिर्ची वन। It's hot.

0: देखिए, अगर आपको भी अपना शौक है ना कि अपनी दिल की धड़कनों को बढ़ाना और एकदम डर जाना, बस आपके लिए एक ऐसा ही इवेंट लाई हूँ. मैं बात कर रही हूँ फंटाना की. हाल ही में जब मैं इस टेंट में गई और देखा मैंने फंटाना, इट वाज अमेजिंग. रियली मैं OMG वाला मेरा फेस बन चुका था. आई वाज लाइक स्टंड बाय ऑल द स्टंट्स दे हैव डन. उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं नींद की छुट्टियों में जाने के लिए तो जल्दी जाइए. 31 मई तक है ये, हयात प्लाजा में है. एंड ऑल्सो आपको बता दूँ कि द बेस्ट पार्ट वॉज द यू नो वो एक्रोबैट्स जितने भी थे, दे वर सुपर टैलेंटेड. दे ऑल वर सुपर टैलेंटेड. लेकिन हाँ, बात ये है कि अगर आप कुछ नई चीज़ देखना चाहते हैं, अगर आपको भी मज़ा आता है ये एडवेंचरस एंड स्टंटबाजी देख के, तो भाई ज़रूर जाइए फंटाना देखने. एंड फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट.
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
6: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
7: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100813।
8: नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
9: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
10: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बचपन की बात ही अलग होती थी. कॉटन कैंडी खाते थे लेकिन अब तो कॉटन कैंडी बोलते हैं. हमारे टाइम पे उसको बोलते थे बुढ़ी माँ के बाल या बुढ़ी माँ का चाटा. अगर आप भी इस टर्म से रूबरू हैं, आपको पता है कि इसको ऐसा बोला करते थे बचपन में, तो वेलकम. आप भी मेरे ज़माने से हैं. बट मैं आपको बता दूं कि वो जो कैंडी का कलर होता था कॉटन कैंडी का, इट वाज लाइक पिंक कलर, येलो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते थे. तो मतलब एकदम सोचने पे मजबूर होता था जब व्हेन वी यूज्ड टू ईट इट, अपनी टंग पे रखते थे वो मेल्ट हो जाता था, है ना. वो बिल्कुल शुगर होता था एंड कितना मज़ा आता था वो खा के, है ना. और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ देखने को भी मिले कुछ ऐसी कैंडी थीम में, तो मैं आपके लिए कैसा इवेंट लाई. जी हाँ, अगर आपको ऐसी कैंडी कलर और ये कैंडी थीम पसंद है तो आपके लिए आ गया है फ्लफी फैंटासिया. जी हाँ, 21 मई से लेके 30 तक ये चलेगा आपके कतर में एंड इट इज इन मॉल ऑफ कतर. देखिए सबसे बड़ा इवेंट है ये, बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इट विल बी ए लाइव शो जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे इसको इन द मॉर्निंग 9 AM से लेके 11 PM तक ये रहेगा. एंड फ्लफी फैंटासिया विल बी अ फैंटास्टिक, आई थिंक इट्स अ फैंटाबुलस आइडिया टू गो एंड वॉच विद योर किड्स ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आप एक अलग दुनिया में आ जाएंगे, कैंडी की दुनिया में आ जाओगे. यार किसको नहीं मजा आता. तो एंड ऑल्सो मैंने आपको बता दिया इस स्टेज के पास होगा ये, इट्स अ फैंटास्टिक एंड फैंटेसी एक्सपीरियंस. अगर आपको एरोबैटिक्स, डांस या इल्यूजन्स पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये जाना चाहिए. एंड फॉर मोर ऐसे इवेंट्स के लिए सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट.
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर. एक कुड़ी

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood bold
3: only on Mirchi it's hot. Marhaba Doha, something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके। और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: Who that?
6: Zaheer.
5: Zaheer. Zaheer who?
6: Zaheer si baat hai. Main hoon aur koi nahi.
5: Khat khat. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: It's hot.
1: Love is messy, Jay.

क्या बोलता है, क्या चीज है पैसा। बात करें एक कतरी रियाल इंडियन रुपीस में तो 26.13, एक कतरी रियाल लंकन रुपीस इज 88.27, एक कतरी रियाल बांग्लादेशी टका इज 33.67, एक कतरी रियाल नेपाली रुपीस इज 41.79, और बात करें एक कतरी रियाल पाकिस्तानी रुपीस तो 76.89। ये हाल चाल था हमारे मनी एक्सचेंज का। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौला गौरव के साथ।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर।

0: के समय ना कतर में इतने सारे इवेंट होते हैं कि भाई समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं क्या करें। और फिर आती है मिर्ची ईशा, जो आपका काम थोड़ा सा आसान कर देती है। जी हाँ, द मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन कोलैबोरेशन विद विजिट कतर एंड कतर कैलेंडर, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2026 की ईद अल अदा फैमिली फेस्टिवल जो होगा दैट विल बी इन 974 बीच। यस, इस बीच में आपको ईद सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे होने वाली है बहुत सारी एक्टिविटीज, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी। तो ये होगी 28 मई से लेकर 29 मई तक, एंड जहाँ पे टाइमिंग इसका 4 PM to 8 PM डेली है। आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिस कर देंगे अगर आप जाएंगे नहीं, तो जल्दी से जाइए अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, प्लान करिए अकॉर्डिंगली और एंजॉय करिए इस ईद को। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
7: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ईद का समय आ गया है और सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना ईदी मिलना। जी हाँ, अगर आपको भी ईदी मिलती है और आप भी बच्चों को ईदी देते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट न्यूज लेके आई हूँ। जी हाँ, ईदी एटीएम्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं 10 बड़ी लोकेशंस पे कतर में। और अगर आप ईदी अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को या कजिन्स को देना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू दे सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, उस एटीएम से 10 रियाल भी निकाल सकते हैं, 20 रियाल भी निकाल सकते हैं, तो यू विल गेट हैसल फ्री कैश देयर। एंड ये मतलब एक ट्रेडिशन फॉलो करता है कि भाई जो एक ट्रेडिशन पहले से चलता आ रहा है कि बच्चों को ईदी देनी है, जितनी मर्जी आपकी श्रद्धा है उतनी देनी है, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। एंड ये बड़ा आसान कर देता है आपकी ईदी डिस्ट्रीब्यूशन को। बाकी ऐसी ही मज़ेदार बातों के साथ सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for QAR 200 and get a free stylish duffel bag. Yes, free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: Bollywood, Bollywood, bold
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: खट खट, अगर कर,
7: अगर कर,
6: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
7: खट खट, हु दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या?
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
2: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
4: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

0: अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज हो और बहुत मजेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं इसी जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है एंड इट इज 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM टू 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज्ड, सो थर्सडे 9 AM टू 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM टू 7 PM. तो जाना कहाँ है 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है बच्चों के लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड में आपका मजेदार हो जाएगा, अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & 7.
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर. मिर्ची फ्रेश माल.
2: स्वैग स्टाइल और बोल्ड एनर्जी के साथ सुनो लिपस्टिक.

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची
2: हेलो
3: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं, मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद।
2: डिस्टर्बेंस आ रही है।
4: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: लेडीज एंड लेडीज, क्या हाल चाल? मेरी बात ध्यान से सुनना. आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आई हूँ, मिर्ची मॉमी अवार्ड्स 5.0. जी हाँ, जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है क्राउन पहनने का, उस मॉमी अवार्ड्स का जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं. वी सेलिब्रेट मदरहुड, वी सेलिब्रेट एवरीथिंग दैट टैलेंटेड लेडी आउट देयर. जी हाँ, आप लोगों के लिए ये हसीन मौका मैं दे रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कि मिर्ची मॉमी अवार्ड्स की एंट्रीज के लिए आपको करना क्या है. एक मिनट की वीडियो बनानी है, अपना बॉन्ड शेयर करना है अपने बच्चे के साथ, 5000186 पे भेजना है, 5000186 पे जल्दी से अपनी एंट्रीज भेजिए और हम आपको बुलाएंगे हमारे पास और इंजॉय करेंगे और आपके साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे और आपको इंजॉय भी करवाएंगे. बस जल्दी से जाके अपनी एंट्रीज जल्दी से भेजिए और इंजॉय करिए हमारे साथ. यानी कि आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे और भी हसीन सी खुलासे करेंगे इस इवेंट को लेके. बस आपको करना क्या है, स्टे ट्यून विद अस, चाहे इंस्टाग्राम पे और चाहे हमारी रेडियो स्टेशन पे. तो बस ट्यून इन रहिए 89.6 मिर्ची 1 पे. इट्स ऑल
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: दोस्ती कैसे सुले मैडम? No sorry, no thank you.
7: भाई साहब sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं entertainment चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ entertainment खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा। मिलेगा।
10: कतर का number one radio station.
11: 89.6 FM मिर्ची one. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Are, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.
8: Oh, dekho, ho gaya pair. Khel ho gaya shuru. Dekho, kime ja rahe hain.

ये जो समय है ना, ये बहुत ही चंचल है. व्हाट डू यू से? देखिए, मैं समय रहना की बात नहीं कर रही, मैं टाइम की बात कर रही हूँ. जी हाँ, टाइम अब आगे बढ़ रहा है. तो बता दूँ, मेरा समय भी हो चुका है जाने का, आप लोगों से अलविदा कहने का. तो भाई, अब और क्या कहें आपके साथ. ये जो घंटे थे ना, ये कैसे भी थे पता ही नहीं चला. एंड आई होप कि आपकी जो आने वाले दिनों में छुट्टियां हैं वो बहुत खूबसूरत बीते. स्टेकेशन पे जाइए, इंजॉय करिए, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और इंजॉय करिए ईद के फेस्टिवल को. कल भी आऊंगी मैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, कल भी हमसे करेंगे बहुत सारी बातें, ईद की खास बातें. बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना उसके लिए. तो चलिए, लेती हूँ अलविदा आपसे आज के लिए. कल मिलती हूँ आपको इसी समय. बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
4: नंबर 20।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं, फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स, पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर लाइक स्लो पॉइजन। पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर्स, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो, फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल। पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पहले आ रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइन्स सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: Ja Simran, ja jeere apni zindagi, ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 14।

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फ्रॉम कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।

0: घाट का पानी। एंड सडनली वो सेम डुओ हार्टब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: बस यार ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है। ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी। लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी। भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा इस हफ्ते। लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस। लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम जिसे गाया है शाहिद माल्या ने। रब्बा मैं तो मर गया ओए, माय पिक ऑफ द वीक।
2: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 5।

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सीखनी है ये भटिंडा।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट
6: हूँ देर
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट हूँ देर
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: नंबर 3।
8: वाह।

भी दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइंब नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल, वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 ad से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but Shararat बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क जलाकर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो, शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Hello, Mirchi helpline?
3: नहीं नहीं, helpline Mirchi. बताओ सवाल क्या है?
2: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know, she's good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूँ?
3: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूँ? शर्म करो शर्म।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: पुराने जमाने की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस माला सिन्हा जी को गाने का बहुत शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सिंगिंग पैशन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मुझे शुरू से ही गाने का शौक था। जब मैं छोटी थी तो खूब गाया करती थी, और वो गाने भी किसके, पिताजी के, आए गाने वाला, ये जिंदगी उसी की है, लाल दुपट्टा मलमल का, जितने उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ईश्वर ने भी मुझे आवाज बहुत अच्छी दे रखी थी, तो मैं जब गाती थी तो सबको बोलते थे तो दूसरी छोटी बेबी लता गा रही है, तब डिटो नकल करती थी। तो इस तरह से एनकरेजमेंट मिलते मिलते फिर मैंने अपना टीचर मेरे डैडी ने रखा, तालीम ली। बोलते ना, इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। तो जब मैं बॉम्बे आई एक्टिंग के लिए आई, गाना पीछे रह गया, एक्टिंग चल पड़ी।
0: वेल, आगे भी गाना है इन्हीं की फिल्म का, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है,
2: साहब जी को ऐसे कैसे हो सकता है?
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी।
1: कान पकड़,
2: पकड़ ले
1: मेरे को, दिख रहा है यहाँ से मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans, Charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: एक्ट्रेस माला सिन्हा का बचपन कलकत्ता में गुजरा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये छोटी थी तो सिंगर बनना चाहती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चाहा था इसलिए तो मैं गाती थी, टीचर रखा, फिर बाद में मुझे ऑफर गाने का तो नहीं एक्टिंग का मिला। 10-11 साल की थी तो चाइल्ड आर्टिस्ट का मुझे ऑफर मिला। डैडी के एक दोस्त प्रोड्यूसर थे अरविंद मुखर्जी, हमारे पड़ोस में ही रहते थे, वो मुझे देखते थे गाना गाते, खेलते कूदते, कभी कभी हमारे स्कूल में जब प्रोग्राम होते थे तो वो एक पिक्चर बना रहे थे जोग बियोग। तो उन्होंने डैडी को कहा कि भाई आपकी बेटी मुझे बहुत टैलेंटेड लगती है, देखो सबके आगे गा रही है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स या डर कोई ऐसा भाव कुछ है ही नहीं, ये आर्टिस्ट है, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आई वॉन्ट हर टू कास्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। तो डैडी ने कहा ठीक है, लेट अस सी कैसी लगती है ऑन द स्क्रीन। तो वहाँ से फिर मुझे एक्टिंग का चस्का पड़ गया।
0: यहीं से वो बंगाली फिल्मों में पहले चाइल्ड एक्टर बनी, फिर उन्हीं फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनी और फिर बॉम्बे आई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: मुंबई एक्ट्रेस माला सिन्हा जब छोटी थी तो उनके एक अंकल जो कि डायरेक्टर भी थे, उन्होंने उनको एक फिल्म ऑफर की एज अ चाइल्ड एक्टर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन तब उनकी पढ़ाई भी चल
1: रही

0: एक्ट्रेस हमारे स्कूल में नहीं पढ़ने का, पर शी वॉज सो एनकरेजिंग, मिस दास था उनका नाम, तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, इफ शी इज टैलेंटेड, उनमें टैलेंट है तो उसको तो एक्सप्लॉइट होना ही चाहिए, उसको आगे बढ़ना ही चाहिए, तो हम इनका जो नोट्स है ना, हम उनकी सहेली से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे नोट्स करवा लेंगे, जिस जिस दिन वो नहीं आएंगी मिस करेंगी तो लेटर गो अहेड। तो उन्होंने भी इनकरेज किया, बोले कि टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, तब उनको पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर ले, तो बाद में वो तो अचंभा रह गए, बोले शी कैन एक्ट ऑल्सो। तो डैडी ने कहा हम जरा देख रहे हैं फ्रेंड का चेयर है तो शौकिया कर रहे हैं, तो शी ऑल्सो इनकरेज। इस तरह से मुझे डैडी से, मेरा प्रिंसिपल से, प्रोड्यूसर अंकल से जो एनकरेज मिला, तो फिर आगे बढ़ती गई।
1: Well, ये कितनी प्रोग्रेसिव बात है, एंड लेट मी रिमाइंड यू ये मिड 40s की बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स
4: बंद हो गया,
5: अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold art.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: कौन है?
7: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
7: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खट खट, who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Purani jeans. With Charu. Only on

0: मिड 50s तक माला सिन्हा बंगाल की एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन कलकत्ता से बॉम्बे में उनकी एंट्री कैसे हुई, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे यहाँ बॉम्बे में ऑफर मिला, वो भी कैसे, फिल्म फेयर में। फिल्म फेयर भी नई थी, आई थी मार्केट में, तो उसमें मेरा एक फोटो छप गया। तो अमिया चक्रवर्ती जी जिन्होंने दाग बनाई थी, सीमा बनाई थी, कठपुतली बनाई थी, उन्होंने फिर मुझे साइन किया साइड हीरोइन, क्योंकि देखने में हीरोइन लगती थी ना, साइड साइड के लिए ठीक थी, छोटी छोटी पतली पतली लड़की चुलबुली से। तो उसका उस बादशाह में उन्होंने मुझे प्रदीप जी के, प्रदीप कुमार एगेंस्ट में प्रिंसेस का, और वो प्रिंस ये प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, वो तो वो होता है बंजारा गर्ल, अपना उषा किरण जी हीरोइन बंजारन थी, मैं प्रिंसेस। तो उसी पिक्चर से मुझे बॉम्बे में आने का मौका मिला।
0: वेल, इस फिल्म का नाम था बादशाह। इसके बाद मिड 50s में उनकी कुछ हिंदी फिल्में और आई, लेकिन जो फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई वो थी 1957 की प्यासा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

किशोर कुमार और आशा भोसले ने साथ में कुछ 600 गाने गाए होंगे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कई गानों में उनको रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत आती थी, पता है क्यों? क्योंकि किशोर कुमार इतने शरारती थे, इतना मजाक करते थे कि आशा भोसले की हंसी नहीं रुकती थी और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। किसी फन सॉन्ग में किशोर कुमार जमीन पे लोटपोट हो जाते थे, उठते ही नहीं थे, और आशा भोसले हंसती रह जाती थी और गाना ही रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। ऐसी बातें आशा भोसले जी ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में शेयर की हैं। हाय, कितने मजेदार होते होंगे वो रिकॉर्डिंग सेशंस। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
4: हाँ।
5: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
4: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
4: मिसम नाम है।
0: मिसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
4: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
4: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
0: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
4: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
4: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
0: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
4: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
4: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
4: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
4: पिटोगे,
6: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
4: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
7: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
3: जबरदस्त ट्रैक्स,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
7: FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

देवानंद साहब के फादर एक लॉयर थे, उसी के साथ साथ फ्रीडम फाइटर और स्कॉलर भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी, बहुत सारे वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में वो जानते थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं देवानंद साहब का इंक्लिनेशन भी पहले पढ़ाई की तरफ था। देवानंद साहब ने डलहौजी से अपनी स्कूलिंग की, फिर धर्मशाला में भी पढ़ाई की। ये सब जगहें तब पंजाब प्रांत में आती थी, पार्टीशन से पहले की बात है। फिर इंग्लिश में बीए किया और वो एमए भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनके फादर तब अफोर्ड नहीं कर पाए। एंड उसी दौरान देवानंद साहब रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं उनका ये जो छोटा सा सपना एक्टर बनने का चल रहा था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। बस उन्होंने ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे आ गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है शम्मी कपूर साहब के गानों के लिए यूजुअली कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अगर होता भी था तो उनको वैसी कोरियोग्राफी करनी पड़ती थी जैसे शम्मी कपूर साहब का यूनिक स्टाइल था। और तो और ये कई बार अपने कपड़ों की स्टाइलिंग भी खुद ही करते थे। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: I did because I've been, I traveled a lot. I've been to Singapore, Hong Kong, Japan, Tokyo. I mean, I used to go to these places, I used to pick up clothes. I was in London, I used to pick up clothes. I went to Paris, Berlin. All the clothes that you saw in my movies in those days were my clothes. I had bought them for myself. I used to dress up specially. Even that jacket in Jungle is mine. So, I had an eye for that.
0: Well, that style, that swag, that energy, that aura, that charm. शम्मी कपूर साहब, ओए होए, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हमें जिनसे इश्क है उन्हें हमसे इश्क नहीं, उन्हें जिससे इश्क है उसे उनसे इश्क नहीं। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना हमने जो सुना ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का है, सुलक्षणा पंडित एंड अनवर की आवाज में। सुलक्षणा जी बहुत अच्छी सिंगर थी, एक्ट्रेस थी, एंड शी वॉज मैडली इन लव विद संजीव कुमार। सोचिए कितना प्यार होगा। दोनों की डेथ डेट सेम ही रही, 6 नवंबर। संजीव कुमार जी 1985 में गुजर गए थे, एंड आफ्टर दैट सुलक्षणा पंडित बेजार हो गई थी काम से, तब से उन्होंने काम अपना कम कर दिया था बहुत। और संजीव कुमार ने उनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ के बारे में वाकिफ थे कि उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। ऑल्सो वो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी के प्यार से गेट ओवर नहीं कर पाए। हेमा मालिनी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना सुनेंगे अगेन सुलक्षणा पंडित एंड किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दूर कराही। सुनते रहिए मिर्ची

कैफी आजमी साहब के लिखी हुई गजल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे ना उनकी कुछ और लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, आई थिंक मैंने पहले भी शेयर की हैं, कि शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। बिजली के तार पे बैठा हुआ हंसता पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब, शराब मतलब रेगिस्तान में वो रेत जो पानी के जैसे दिखती है दूर से। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समुंदर नजर आया होगा। कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग यहाँ सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ, आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: है मोबाइल पे
3: और क्या,
4: या आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: 89.6
6: मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

आपको पता है 1980 की फिल्म कर्ज एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये मूवी है 1975 की, द री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड। मैंने यूट्यूब पे जाके मूवी देखी, काफी बोरिंग और पका हुआ है, लेकिन मूवी देखते देखते कमेंट्स में मुझे पता चला कि इसी नाम की एक नॉवल भी पब्लिश हुई थी 1973 में। तो ये अमेरिकन मूवी उसकी अडेप्टेशन है। कहां से क्या लिया गया है, क्या कहां से क्या इंस्पायर हुआ है, क्या पता है? ऐसा ही है, जीवन में जितना कर्ज उतारते जाओ और चढ़ता जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
2: It's hot. मिर्ची स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
5: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
6: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
8: कैसे रुक सकता है।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

बहुत ड्रिंक करते थे और इसी वजह से एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से उन्हें लिवर की बीमारी हो गई और बहुत ही कम उम्र में ही वॉज जस्ट 41 ईयर ओल्ड उनकी डेथ हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि मिड 60s में शंकर जयकिशन के बीच में जो डिफरेंसेस आए, उनकी दोस्ती में जो दरार आई, उससे भी वो बहुत हर्ट हो गए और ज्यादा ड्रिंक करने लगे। ये भी तो होता है ना यार, जिन रिश्तों में गहराई होती है चोट भी वहीं गहरी लगती है। 1971 में जयकिशन साहब की डेथ ने शंकर साहब को तोड़ दिया। वो म्यूजिक बनाते थे लेकिन उनका मन नहीं लगता था। जयकिशन साहब की डेथ के बाद जितने भी गाने उनके रिलीज हुए उसमें म्यूजिक कंपोजर नाम शंकर जयकिशन ही जाता था। वो एक ऐसी जोड़ी थी कि उनके डिफरेंसेस ने उनको अलग करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood bold only on Mirchi. It's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो दोनों ने कौन से पिक्चर में भाई?
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: कौन है?
5: ईशांत।
6: ईशांत कौन?
5: ईशांत गदाधारी भीम, ईशांत।
6: खट खट, हू दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only

0: सत्ते पे सत्ता फिल्म में वो जो सीन है ना, जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सीन जिसमें अमजद खान अमिताभ बच्चन को ड्रंक कर देते हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए और फिर बाद में उनको किडनैप कर लेते हैं, हाय हाय बड़ा दुख होता है। हाँ, कमिंग बैक टू द सीन, तो वो सीन जिस घर में शूट हुआ है ना, वो जो घर दिखाया गया है, इट इज द सेम हाउस जो अमिताभ बच्चन साहब का घर है जलसा। और सत्ते पे सत्ता फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तभी इस घर को खरीदा गया था, बच्चन जी ने खरीदा था सिप्पी साहब से ये घर, एनसी सिप्पी जो फिल्म मेकर सिप्पी फैमिली है उनसे। और ये भी सुनने में आता है कि इस फिल्म की जो अमिताभ बच्चन की फीस थी उसको उस घर के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया गया था कि आप फिल्म में काम कर लो और घर ले लो और आप हमसे यहाँ पे ब्रेक ले लो। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।